मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते

0: श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आज का चिंतन, जब हम खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो हमारे आसपास की हर चीज भी बेहतर हो जाती है। ये था आज का चिंतन और अब आरंभ करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ होती है। यह केवल अनुभव और महसूस करने का विषय है। जब हम अपने भीतर शांति और विश्वास जगाते

श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में ही सब कुछ देखता है, उससे मैं कभी विमुख नहीं होता और न ही वह मुझसे कभी विमुख होता है।

मनुष्य सांसारिक मोहमाया और व्यर्थ की बातचीत में अपना पूरा जीवन गंवा देता है और ईश्वर का नाम कभी नहीं लेता और इस संसार रूपी मकड़जाल में फंसा रहता है। न मानसिक शांति का अनुभव होता है, न ही उस परमपिता परमेश्वर को महसूस कर पाता है।

भजन में भाव हैं, जैसे जैसे मनुष्य की अवस्था बढ़ती है विभिन्न अवस्थाओं में वो संसार के झंझटों में फंस जाता है। केवल एक काम करना वो भूल जाता है, वो है भगवान का नाम लेना, हरि का सुमिरन करना। तो किस अवस्था में कौन कौन से झंझट हैं जिनमें मनुष्य फंस जाता है, उन्हीं का वर्णन है इसमें।

जब मनुष्य संसार रूपी इस मोहमाया में फंसा रहता है तो उसे ईश्वर भक्ति भी कठिन लगती है। अहंकार रहित होने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, मन के विकार मिट जाते हैं और मानसिक शांति का अनुभव होने लगता है।

संसार में इंसान के जीवन में सबसे बड़ा भय, डर और दुख मृत्यु को माना गया है। ये ईश्वर का अटल नियम है कि जिसने जन्म लिया वो एक दिन जाएगा। संयोग के साथ वियोग भी है, ऐसा ही विधि का विधान है। यहाँ कैसी भी परिस्थिति हो, सभी को यहाँ आकर हार माननी पड़ती है। मृत्यु देह की होती है, आत्मा तो अमर है। मृत्यु से पूर्व ही ईश्वर को सर्वस्व अर्पण करके अपना रक्षक मान लें तो भय, चिंता और दुख से मुक्ति पाई जा सकती है।

उस परम पिता परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ संपन्न करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत की दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम

सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: श्री रामचरितमानस गान से आपने सुना आज का प्रसंग। स्वर थे उत्तरा केलकर और अनूप जलोटा के। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से लीजिए अब सुनिए कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे धान की रोपाई में सावधानी। किसान भाइयों, खरीफ की फसल है हमारी, मुख्य फसल है, खाद्यान्न फसल, तो इसमें हमने हर तरह की सावधानी बरतनी पड़े तब जाकर हम पूरी पैदावार इसमें ले सकें। चाहे इसमें हमने कोई भी इसमें काम है, चाहे शुरू में हमने बीज की बिजाई कराई इन पौधों के लिए, वहाँ से लेकर नए और अब रोपाई तक, बल्कि यूँ कह सका कि आगे तक हमने पूरा ध्यान रखना पड़ा, तभी जाकर हमने पूरी पैदावार इसमें मिल रही। तो इसमें जो खासकर बोनी किस्में हैं उनकी तो आपने बताया है कि वह रोपाई जरूर 7 जुलाई तक हमने पूरी कर लेनी चाहिए। यानी जो भी बोनी किस्में जैसे है IR64 है, HKR46 है, HKR47 है, PR106 है, जया है, HKR120 है, HKR126 है, HKR127 और हरियाणा शंकर धान 1, भाई इनकी रोपाई हमने 7 जुलाई तक कर लेनी चाहिए। और भाई अपने जागरूक भी है खूब और उसमें कर लें। और जो कम अवधि वाली है किस्में जैसे गोविंद है या HKR48 है, उसकी रोपाई भी हमने जुलाई के अंत तक यानी इस महीने के अंत तक हमने कर लेनी चाहिए। और जो दूसरी किस्में रहेगी लंबी किस्में बासमती की, जैसे तरावड़ी बासमती है, CSR30 है, बासमती 370 है, बौनी बासमती और

0: बासमती एक से है, पूसा बासमती एक है, पूसा बासमती चार है, पूसा 1121 है कि रोपाई भी हमने जुलाई के मध्य तक ये कर लेनी चाहिए यानी। हाँ, उसमें ये ध्यान रखें, एक तो जिस तरह पौध उखाड़े हैं अपने मजदूर, तो उन्हें ये ध्यान रखें जड़ रह जाए कहीं उसमें, ये कि वह जड़ ना टूट जाए, यानी एक दिन शाम ने पहले उसमें पानी लगा दे अपने पौधा में, फिर तो नरम हो जाए जमीन और आराम से वो पड़ी जाए उसमें। फिर उसमें जो फासला है, फासला भी हमने पूरा रखना है भाई उसमें, जैसे लाइन तो लाइन का फासला तो हमने 20 सेंटीमीटर रखना है, और पौधे तो पौधे का हमने इसमें 15 सेंटीमीटर रखना है। ध्यान हमने ये भी रखना है कि जिस तरह मान लिया मजदूरों का वहां हमने खड़ा रहना है भाई, कि ऐसा ना हो मजदूर लगाओ वो जड़ ने भी और पौधे तने के बीच में तय होकर, यानी जड़ भी ऊपर रह जाए जमीन से और वो तना तो ऊपर नहीं रहना, इस चीज का भी हमने पूरा पूरा ध्यान रखना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जो पौधे मान लिया जड़ ऊपर रहेगी भाई, तो ये इसमें हमने पूरा उसमें ध्यान रखना है। हाँ, इसमें एक चीज का और ध्यान रखें कि वह जो खाद का है, खाद का इसमें जरूर ध्यान रखें, तो इनमें जिस तरह 60 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है, या यूं कह इसका 130 किलो यूरिया खाद, 24 किलोग्राम इसमें फास्फोरस देनी, या 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट है, और 43 किलोग्राम इसमें म्यूरेटा पोटास है, और 10 किलोग्राम जिंक। जिस तरह जिंक का भाई आप तो पहले बताया जाए कि हर फसल में, पहले तो यह था कि भाई एक साल में दे दिया जाए, लेकिन अब जो जमीन में है लो तत्व या पोषक तत्व बहुत कमी हो, इसलिए अब इसमें जिंक हर फसल पर देना जरूरी है, एक थैली 10 किलो की, तो ये जरूर ध्यान रखें। एक भाइयों जरूर ध्यान ये भी रखना है कि जो आप पौधे रोपाई करें, ये ना देखें कि बरसात होगी तो उसमें क्या होगा लगा दिया हम इसने भाई, उसमें अगर मान लिया आपके पास पानी नहीं है या ऊंची जगह जहां पानी नहीं रोकेगा वहां नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाद में भाइयों अगर ये देखा जाए कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाए, और खर्चा होने की वजह से फिर आमदनी इतनी हो नहीं पाती, कारण उसका ये है कि वह ऊंची जगह पर होगा तो पानी तो रुकेगा ही नहीं, तो उसमें पानी का लिए हमने ज्यादा बार बार उसमें पानी देना पड़ेगा, ट्यूबवेल से है या दूसरे उसमें साधनों से हमने पानी देना पड़ेगा, तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आगे जाकर किसान भाई ये कहे हैं कि भाई इसमें जो खर्चा ज्यादा होगा आमदनी कम होगी, उसका कारण यही है कि भाई आप ऐसा देखें कि जो नीचे जगह झील की जगह उसमें है उसमें ही लगाओ जहां पानी लंबे समय तक रह जाए, नहीं तो अगर जब पानी का यूं देते रहे और बार बार ट्यूबवेल वगैरह चलाते रहे तो इसमें आपका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखें। और एक इसमें ये भी रखें कि भाई जिस तरह आपने पौध लगाई उसी टाइम पर खरपतवार नियंत्रण की दवाई डाल दें, बढ़िया तो ये रहे। देखो आजकल तो ये देखा गया कि वह जो बिजाई कर लिया है ना, लाइना में बिजाई कर हाँ धान की पौध रोपाई की बिजाई, तो वो और भी सत्य बढ़िया है, तो चलो इन जिन भाइयों ने अब नहीं करा, अब रोपाई का काम है वो रोपाई कर ले, और रोपाई में ये जरूर ध्यान रख लें कि भाई उसका एक तो पौधा फासला रखें, जिस तरह लाइन तो लाइन का फासला तो 20 सेंटीमीटर रखना है, पौधे तो पौधे का फासला हमने इसमें 15 सेंटीमीटर रखना है, तो इस तरह हम उसकी आगे रोपाई कराएंगे और ठीक देखभाल कराएंगे, और समय पर हम उस पर पानी लगाते रहेंगे खाद का। हाँ, जो लंबी बढ़ने वाली है बासमती की किस्में है यानी, उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि वह ज्यादा यूरिया खाद उसमें नहीं देना, नाइट्रोजन की खाद उसकी।
1: आप सुन रहे थे कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे संस्कृत हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता, भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
3: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्यां परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉ जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉ जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधानसचिवस्य डॉ पीके मिश्रवर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यंकतारालेन पराजित्य 54.59 वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक

विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिन में 12:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:45।

प्रातः 7:15 पर हमारे सेहत कार्यक्रम में डॉक्टर मोहित गोयल के साथ बातचीत का विषय होगा गंजेपन की समस्या व समाधान। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर करियर काउंसलिंग में आज बातचीत होगी, विषय रहेगा भारतीय ज्ञान प्रणाली का युवाओं के करियर में महत्व।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर कार्यक्रम रहेगा भेंटवार्ता एक किसान से। इसके अतिरिक्त चर्चा रहेगी कृषि वानिकी विषय पर। बच्चों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली सुनिएगा ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00। दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे लेकर हाजिर होंगे प्रातः 7:35 पर। और ये हैं संगीत के कुछ आकर्षण। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज कलाकार होंगे राम कुमार खुंडा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन सुनिएगा प्रातः 9:00। दिन में 1:10 पर आपके अनुरोध पर कार्यक्रम रहेगा आपके खतों पर आधारित। आपके पत्रों पर आधारित एक और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मनचाहे गीत लेकर हाजिर होंगे 10:00। फिल्म संगीत आप शाम 7:30 पर भी सुन सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने कार्यक्रम हमारी सेहत, जिसमें आज डॉक्टर मोहित गोयल के साथ भेंटवार्ता का विषय है गंजेपन की समस्या व समाधान।
1: श्रोताओं, आज बात करेंगे गंजेपन की समस्या, इसका समाधान व इससे कैसे बचें। और इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर मोहित नागपाल जी। आप चर्म रोग विशेषज्ञ हैं और रोहतक में आप काफ़ी लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर नागपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू जी सर।
1: जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, किसे गंजापन कहेंगे हम?
2: जो गंजापन होता है बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। नॉर्मली हमारे 50 से 100 बाल हर दिन झड़ते हैं। जब लगे कि इससे ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, पिल्लो पर, कॉम पर या वॉशरूम में बंचेस दिखाई देने लग जाएं, तब उसे हम गंजापन कहते हैं, तब हमें दिखाना चाहिए।
1: जी, तो ये कितनी उम्र के लोगों में अक्सर होता है?
2: नॉर्मली ये 20-40 ईयर्स में होना शुरू हो जाता है।
1: जी,
2: मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इससे अफेक्टेड रहते हैं।
1: हाँ, तो जैसे कि भाई दोनों ही लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही अफेक्टेड रहते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। तो क्या पुरुष में ज़्यादा वो होता है उसमें, या फिर जो कोई महिला है, महिला में गंजेपन की समस्या ज़्यादा आती है, खासकर अगर हम अर्ली एज की बात करें, शुरुआत से 20-22 साल या 25 साल, उस समय से लेके 40 तक?
2: तो मेल्स में जल्दी होना शुरू हो जाता है, 20s में शुरू हो जाता है। आजकल जिस हिसाब से लाइफस्टाइल है, तो ये जल्दी होना शुरू हो गया है। मेल्स में जल्दी होता है और उसमें साइड से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में थोड़ा लेट होता है, 30s to 40s में। उसमें जो मांग वाला एरिया है, सेंट्रल पार्टिंग बोलते हैं उसको, वो थोड़ा चौड़ी होना शुरू हो जाती है। स्कैल्प थोड़ा उसमें विजिबल होना शुरू हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। तो इसके जब हम तह में जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम गंजापन को पहचान नहीं पा रहे हैं
2: जी।
1: तो लगातार हम कितने दिनों तक ऐसा ऑब्जर्व करें कि हाँ, हमारे सामने ये समस्याएं आ रही हैं, तो अब कोई ना कोई दिक्कत है, तो इसको पहचानने की शुरुआत हम कहाँ से कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
2: देखिए, जब हमारा कॉन्टिन्यूस हेयर फॉल चल रहा हो लगभग 3 महीना और उससे भी ज़्यादा, और हमारी स्कैल्प दिखना शुरू हो जाए, हमारी हेयर थिनिंग होना

0: शुरू हो जाए
1: हाँ
0: तब हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए कि
1: हाँ
0: हमें दिखा लेना चाहिए,
1: बाल पतले
0: क्योंकि
1: हो जाएं
0: हाँ
1: और
0: हेयर थिनिंग या बाल पतले हो जाएं तब
1: हाँ
0: हमें दिखा लेना चाहिए, क्योंकि
1: अच्छा।
0: जितना जल्दी आप शुरू करेंगे ट्रीटमेंट उतना ही बेहतर इलाज रहेगा।
1: कई बार ऐसा होता है कि सर में खुजली होती है
0: जी
1: और कोई दिक्कत होती है, डेंड्रफ होती है,
0: जी
1: तो ऐसी भ्रांति हो जाती है कि हमारे सर में डेंड्रफ है और कोई दिक्कत है या फिर कोई समस्या आ गई है, खुजली हो रही है,
0: जी
1: तो सोचते हैं कि इसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं, ठीक हो जाएगा। तो क्या ये भ्रांति है?
0: नहीं, डैंड्रफ इतना इम्पॉर्टेंट कॉज नहीं है हेयर लॉस का,
1: हाँ
0: बाकी दूसरे कॉजेज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं जिसमें हार्मोनल, जेनेटिक,
1: हाँ
0: न्यूट्रिशनल या दूसरी बीमारियां रहती हैं,
1: हाँ
0: स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसीज़ेस भी हो जाते हैं आजकल
1: हाँ
0: फीमेल्स में बड़ा कॉमन, PCOS बोलते हैं, पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते थे, आजकल
1: हाँ
0: उसका नाम बदल दिया है, PMOS बोलते हैं, पॉली एंडोक्राइन
1: हाँ
0: मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये
1: हाँ
0: मेन कॉजेज़ हैं जो हेयर लॉस होता है।
1: थोड़ा
0: इतना
1: मोटा मोटा
0: ज़्यादा
1: बताइए।
0: डैंड्रफ नहीं हो जाता कि उससे इतना हमें हेयर लॉस हो जाता है।
1: हाँ तो थोड़ा सा इसको विस्तार से बताइए कि जो आप कारण बता रहे हो,
0: जी
1: जैसे जो हार्मोन इम्बैलेंस
0: हार्मोनल,
1: है।
0: मेन हार्मोनल रहता है
1: हाँ
0: जो हमारे हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो
1: हाँ
0: मेल्स हो या फीमेल्स हो,
1: हाँ
0: इसमें मेल्स का हार्मोन थोड़ा एक्सेस में हो जाता है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है।
1: अच्छा
0: दोनों के अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं,
1: हाँ
0: कुछ जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं, भाई हमारी फैमिलीज़ में हेयर लॉस था पिताजी को माताजी को तो हमारे को भी होगा,
1: हाँ
0: वो भी एक कॉज रहता है। न्यूट्रिशनल एक इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है
1: हाँ
0: जो आजकल यंग जनरेशन में भी मिलता है, इसमें कुछ वाइटमिन्स की डेफिशिएंसी होती है, वाइटमिन D3 B12, उनकी वजह से भी हेयर लॉस होता है।
1: अच्छा
0: जी
1: ठीक है। तो अब इसमें कई सवाल और आ रहे हैं मन में कि आपने हार्मोन्स की बात की, पुरुषों में किस हार्मोन्स की अधिकता या कमी होती है कि जिसकी वजह से उनमें ये समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं डॉक्टर साहब?
0: देखो, मेल्स में कुछ टेस्टोस्टेरोन का एक एक्टिव फॉर्म रहता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन,
1: अच्छा
0: उसके रिसेप्टर्स, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा साइंस हो जाएगा, उसके रिसेप्टर्स जो होते हैं हेयर्स में वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी
1: अच्छा
0: वजह से हेयर लॉस हो जाता है।
1: जी
0: जी
1: बिल्कुल। और कई बार हम देखते हैं कि किसी के घर में, किसी के परिवार में, आपने हेरिडिटरी सिस्टम की बात की है, जेनेटिक्स की बात की है
0: जी
1: कि भाई बाप है वो या दादा हो या फिर ऐसे जो मेल्स हैं या फिर फीमेल्स हैं, उनमें गंजेपन की समस्याएं आ रही है जनरेशन से चलते
0: हाँ
1: हुए,
0: वो होता
1: तो
0: है
1: क्या
0: वो,
1: उनको शुरुआत से ही अलर्ट हो जाना चाहिए?
0: हाँ उनमें जो हेयर लॉस होता है वो जल्दी ही शुरू हो जाता है, जैसे 20s में ही शुरू हो जाता है, तो
1: हाँ
0: जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ में डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें इसमें जो आपने लाइफस्टाइल की बात की है,
0: जी
1: न्यूट्रिशन की बात की है,
0: जी
1: तो लाइफस्टाइल कैसे कारण बनता है?
0: लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल सब चीज़ों में, क्योंकि आजकल जो लाइफस्टाइल हो गया है सेडेंट्री हो गया, बैठने का काम बहुत ज़्यादा हो गया,
1: हाँ
0: डाइट इतना अच्छा नहीं है, जंक फूड्स पे हम ज़्यादा रिलाई करते हैं, स्लीप
1: हाँ
0: वगैरह प्रॉपर नहीं होती,
1: हाँ
0: स्ट्रेस लेते हैं हर चीज़ के लिए यंग जनरेशन, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं,
1: अच्छा
0: तो फीमेल्स में बहुत कॉमनली इंसुलिन एक रेजिस्टेंस शो हो जाती है हमारी
1: अच्छा
0: बॉडी में,
1: हाँ
0: जिसकी वजह से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है सिर पर, और फेस पर हेयर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स वगैरह इरेगुलर हो जाते हैं, तो
1: हाँ
0: ऐसा शुरू होने से पहले ही हमें एक्शन ले लेना चाहिए, हमारी डाइट अच्छी हो जानी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह हो जाना चाहिए, प्रोटीन डाइट में अच्छी हो जाए, ये हमारे को कुछ स्टेप्स ले लेना चाहिए जिनसे ये अर्ली स्टेज में ही हम रोकथाम कर सके चीज़ों
1: जी
0: की।
1: बिल्कुल। रोकथाम की आप बात कर रहे हैं, हमने जान लिया कि भाई किस वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। अब जब हमें वजहों का पता चल गया, तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि अब हमारे बाल झड़ने की शुरुआत हो गई है। जैसा आपने बताया कि अगर बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, 3 महीने तक लगातार बाल झड़ रहे हैं, एक तो हमको ये सिम्टम दिख गया है, इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम होते हैं कि जिनको हम पहचान सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे बात करें, डेंड्रफ की बात कर सकते हैं हम, सर में खुजली की बात कर सकते हैं, या फिर और किसी प्रकार की बीमारी हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब सर में कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके कहीं कहीं से बाल ठीक है, कहीं कहीं से उड़ गए हैं एकदम से।
0: जी
1: जी
0: वो एक अलग डिजीज़ रहता है, एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, जिसमें हमारे सिर में ऐसा सिक्के की शेप के कुछ हेयर लॉस वाला पैटर्न बन जाता है, वहाँ
1: जी
0: तरफ से पूरे बाल चले गए,
1: हाँ
0: वो एक अलग ऑटो इम्यून बीमारी रहती है,
1: हाँ
0: जो ये वाला एंड हार्मोनल हेयर लॉस होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो
1: हाँ
0: बहुत सारे टाइप्स के हेयर लॉस होते हैं, किसी में स्कारिंग होती है किसी में नहीं होती, तो
1: हाँ
0: बहुत सारी कैटेगरीज

0: है इसकी, जिसमें हेयर लॉस को डिवाइड किया जाता है, और
1: हाँ
0: मोस्ट कॉमनली हार्मोनल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, ये कॉमन हेयर लॉस के कारण है।
1: हाँ
0: डैंड्रफ जैसे मैंने पहले भी बताया, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है कि उससे इतना हेयर लॉस हो जाए।
1: हाँ
0: जी
1: बिल्कुल। तो इसमें जब हेयर लॉस की हम बात कर रहे हैं, और कोई ऐसा लक्षण है जिसको देख के हमको अलर्ट हो जाना चाहिए?
0: जब हमारे बाल थोड़ा सा पतले होना शुरू हो जाए, हमारे सिर में थोड़ा हेयर की डेंसिटी कम होना शुरू हो जाए, तब और थोड़ा स्कैल्प दिखने लग जाए, और फीमेल्स में जो मांग वाला एरिया होता है वहाँ पर उनका गैप दिखना शुरू हो जाए, तब हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे को हेयर लॉस शुरू हो गया है।
1: जी, अब इसमें और कुछ बातों की तरफ ध्यान देते हैं डॉक्टर साहब। जैसे अगर देहात की बात करें, गांव की बात करें, तो उसमें कई बार लाइफ स्टाइल में ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती है जो नुकसानदेह हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं,
0: जी,
1: तो क्या इससे बालों को नुकसान होता है या फ़ायदा होता है?
0: मुल्तानी मिट्टी से थोड़ा सा स्किन और हेयर हमारे ड्राई हो जाते हैं, तो
1: जी
0: हम ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते कि उसको लगाएं। जब थोड़ा ऑयल प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो, डैंड्रफ ज़्यादा हो, उसमें फिर भी थोड़ा उसका रोल रहता है, पर
1: हाँ
0: हेयर लॉस के लिए उसका कुछ ऐसा प्रिवेंशन या इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट या इफ़ेक्टिव रोल नहीं है।
1: अच्छा, इसके साथ में अगर हम साबुन का प्रयोग कर रहे हैं,
0: जी
1: कई बार ऐसा होता है कि बहुत हार्ड साबुन होता है, और इवन कई बार तो जो कपड़े धोने का साबुन है उसको भी यूज कर लेते हैं
0: जी,
1: हम।
0: पहले यूज़ किया जाता था, पर
1: हाँ
0: आजकल तो हम रिकमेंड करते हैं थोड़ा माइल्ड कोई भी शैम्पू हो जो स्कैल्प में लगाया जाए,
1: हाँ
0: और एक माइल्ड कोई कंडीशनर हो जो शैम्पू करने के बाद बालों के स्ट्रैंड्स पर लगाया जाए।
1: हाँ
0: यही नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं
1: जी।
0: कि यूज़ किया जाए।
1: तो क्या अगर लाइफ स्टाइल में गांव के लोग इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, साबुन का प्रयोग कर रहे हैं,
0: जी
1: चाहे वो कपड़े धोने का साबुन है या फिर सिंपल ऐसा ही साबुन है
0: जी
1: किसी भी ब्रांड का,
0: जी
1: उनसे बालों में नुकसान होता है डॉक्टर साहब?
0: थोड़ा सा रफ़ और ड्राई कर सकते हैं जो हार्श सोप्स होते हैं, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते। कुछ हमारे स्किन का, हेयर का कुछ पीएच होता है, वो
1: हाँ
0: उससे नहीं मैच करता, तो हम
1: हाँ
0: ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते। कोई
1: जी
0: भी माइल्ड शैम्पू जो पीएच कॉरेस्पॉन्ड करता हो, हम वो रिकमेंड करते हैं कि यूज़ करें आप।
1: जी कई बार मार्केट में तेल आ जाते हैं, कई तरह के, कोई
0: जी
1: बादाम का तेल है, कोई आंवले
0: जी
1: का तेल है, कोई
0: जी
1: अन्य किसी प्रकार का तेल है,
0: जी
1: उनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि या तो वो कहेंगे कि बाल ज़्यादा आ जाएंगे इससे, और कई बार उल्टा होता है, साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या करें?
0: जी हम नॉर्मली हेयर ऑयल भी नहीं रिकमेंड करते हैं। जो भी अगर ऑयल का काम रहता है, वो हमारे स्कैल्प में जो हमारे हेयर को ऑयल चाहिए होता है, वो अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है।
1: जी
0: अगर हम ऑयल ऊपर से लगा रहे हैं, तो डैंड्रफ जो आप बता रहे थे, वो इंक्रीज़ हो सकता है,
1: जी
0: क्योंकि डैंड्रफ में क्या होता है, एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होती है हमारे स्कैल्प
1: ठीक
0: में,
1: है।
0: तो
1: हाँ
0: हम ऊपर से और ऑयल लगाएंगे तो उसकी ऑयल की डिपोजिशन कर देगा, जिसकी वजह से डैंड्रफ बढ़ जाता है और यीस्ट इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है।
1: ठीक है।
0: तो हम ऑयल नॉर्मली नहीं रिकमेंड करने बताते। अगर फिर भी आपको ऑयल लगाना है, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑयल नहीं है, कोकोनट ऑयल अच्छा ऑयल रहता है जो स्किन और हेयर के लिए अच्छा रहता है, और जब भी आपने सिर धोना हो, तो आधा या 1 घंटा पहले आप ऑयल लगाकर उसको वॉश कर सकते हैं शैम्पू के
1: जी,
0: साथ।
1: अब हमें सारी बातों का पता चल गया, डॉक्टर के पास हम चले गए हैं,
0: जी
1: अब इसके इलाज के बारे में डॉक्टर नागपाल जी बताएं।
0: जो हेयर लॉस होता है, पहले तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि किस वजह से हो रहा है, हार्मोनल है, न्यूट्रिशनल है, और उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं।
1: हाँ
0: जो हम घर पर कर सकते हैं, उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडिफिकेशन का रोल रहता है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन अच्छा रखें, टाइमली खाना खाएं, स्ट्रेस फ्री रहें, स्लीप वगैरह प्रॉपर रखें। क्रैश डाइटिंग आजकल बड़ा यंगस्टर्स में रहता है कि क्रैश डाइटिंग करते हैं, एकदम से वज़न कम करना है या कुछ भी, तो उसकी वजह से हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो
1: अच्छा
0: नहीं करना चाहिए।
1: जी
0: गलत हेयर केयर की चीज़ें, प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, स्ट्रेटनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव एक्सट्रीम कलर्स नहीं लगाने चाहिए हमें हेयर पर,
1: ठीक है।
0: वो हमारे
1: हाँ
0: हेयर के स्ट्रैंड्स को वीक करते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं।
1: एक्सट्रीम कलर को थोड़ा सा समझाएं डॉक्टर साहब।
0: एक्सट्रीम कलर्स का मतलब, जैसे हमारे जो हेयर का जो शेड रहता है, उसके हमें अगर हमें कलर करना हो, तो एक या दो शेड ऊपर नीचे हम कर सकते हैं।
1: हाँ
0: एक्सट्रीम शेड्स, 4-5 शेड्स, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, ऐसा कलर नहीं करना चाहिए, उससे हेयर रफ होते हैं और ब्रिटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं।
1: अच्छा,
0: जी
1: और इसके साथ साथ में जब आप ट्रीटमेंट करते हो
0: जी
1: तो सबसे पहले क्या टेस्ट होता है सब चीज़ों का?
0: कुछ हार्मोन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, जैसे फीमेल्स होते हैं तो पीसीओ प्रोफाइल हम करते हैं, थायराइड के टेस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनल अगर कॉज रहता है

0: तो हम वाइटामिन D3 और B12 और फेरेटिन, ये कुछ एक टेस्ट रहते हैं जो हम कराते हैं नॉर्मली।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ट्रीटमेंट के विकल्प की बात कर रहे हैं उसमें,
0: जी
1: तो उसमें क्या खाने को दिया जाता है कुछ, या फिर सर में लगाने को दिया जाता
0: दोनों
1: है?
0: चीज़ें रहती हैं, कुछ
1: अच्छा
0: डाइटरी चीज़ें रहती हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स रहती हैं जो हम हेयर को सप्लीमेंट, ग्रोथ को सप्लीमेंट करते हैं उसके लिए देते हैं, और कुछ लगाने के भी सॉल्यूशंस और सीरम्स होते हैं वो हम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का हेयर लॉस है।
1: जी, अब हम उनके बारे में बात करते हैं कि जिनका सर पूरा ही गंजा हो गया है, सर पे बाल बिल्कुल नहीं बचे हैं,
0: जी
1: अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमें सर पे वापस बाल उगाने हैं, तो क्या उनके लिए कोई आशा की रोशनी है?
0: उनमें हम ट्राई कर सकते हैं सर, तो इसीलिए मैंने पहले बताया कि जितना आप जल्दी एक्शन लेंगे उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आएगा और उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट माना जाएगा।
1: जी
0: जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रेड ऑफ हेयर लॉस हो जाता है तब ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है,
1: जी
0: बालों को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है,
1: हाँ
0: हेयर लाइन को वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए जब हमारा हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जा रहे शुरू में ही तभी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो एक्सट्रीम स्टेजेस में हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना पड़ सकता है।
1: जी आपने हेयर ट्रांसप्लांट की बात की, इस तकनीक के बारे में बताएं।
0: हेयर ट्रांसप्लांट भी एक टेक्निक रहती है जिसमें हम हेयर के फॉलिकल्स जो होते हैं वो सर के पीछे वाले हिस्से से निकाल कर और उसको आगे वाले हिस्से में जहाँ हेयर लॉस हुआ हुआ है वहाँ पर इम्प्लांट करते हैं।
1: जी,
0: जी
1: तो उसके ट्रांसप्लांटेशन के बाद में
0: जी
1: क्या सारे सर पे ठीक से बाल उग जाते हैं, या फिर इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट होता है?
0: डिपेंड करता है कैसी टेक्निक से आपने हेयर लिया है, कैसी टेक्निक से उसको इम्प्लांट किया है।
1: जी
0: नॉर्मली अगर अच्छे टेक्निक्स यूज़ किए हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो जब हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसके बाद काफ़ी कुछ ध्यान भी देना पड़ता है, और इसके
0: जी
1: साथ साथ में जो गांव के लोग हैं
0: जी
1: या फिर देहात के लोग हैं या फिर जो रोज़मर्रा के रूटीन में इस समस्या से परेशान हैं, उन लोगों को आप कोई सुझाव देना चाहें इस बारे में?
0: देखिए उसमें हम यही एडवाइस कर सकते हैं कि अपने हेयर की हाइजीन रखें, हफ्ते में 2 बार या 3 बार सिर को माइल्ड शैम्पू से वॉश करें।
1: माइल्ड शैम्पू से क्या समझाएं हम लोगों
0: माइल्ड
1: को?
0: शैम्पू में कुछ एक शैम्पूज रहते हैं जो सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री होते हैं जिसमें
1: हाँ
0: ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ना डले हों,
1: अच्छा
0: ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वगैरह ना हो, वो माइल्ड
1: जी
0: शैम्पूज होते हैं
1: हाँ
0: वो हम यूज़ करना एडवाइस करते हैं कि वो आप यूज़ करें।
1: अच्छा
0: लास्ट में हम ये रिकमेंड करते हैं कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह रहते हैं
1: हाँ
0: उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें,
1: जी
0: वो जो आपको नुस्खे बता रहे हैं वो आप नहीं ऐसा ब्लाइंडली फॉलो ना करें,
1: हाँ
0: क्योंकि हर किसी का हेयर लॉस का अलग कारण रहता है, तो
1: हाँ
0: पहले उसको जानें कि
1: हाँ
0: क्या कारण की वजह से हो रहा है हेयर लॉस और उसके बाद ही ट्रीटमेंट करें। तो इसको जानने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए,
1: जी,
0: ऐसे ही आप सोशल मीडिया पर देख कर कि ये लगा लेते हैं तो उनसे नुकसान भी हो सकता है।
1: नुकसान की जैसे हम बात करें, आपने इस दिशा में ध्यान दिलाया है
0: जी
1: कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी कुछ भी देख लेते हैं और वहाँ पे जो नुस्खे बताते हैं
0: जी
1: उन नुस्खों का प्रयोग करने लग जाते हैं। उदाहरण जैसे बात करें
0: जी
1: कि कई लोग दही लगा लेंगे,
0: जी
1: लस्सी से लेप कर लेंगे सर में, और कुछ आयुर्वेदिक के नाम पे कुछ कुछ अलग अलग ऐसे प्रयोग कर लेते हैं
0: जी
1: जिसका कई बार इन्फेक्शन हो सकता है डॉक्टर साहब।
0: जी बहुत कॉमन रहता है, दही और लस्सी तो खैर इतना हार्मफुल नहीं है,
1: जी
0: पर कई कुछ रेकमेंड कर देते हैं कि आप विनेगर लगाएं, सिरका लगा लेंगे, लहसुन घस के लगा लेते हैं, अदरक घस के लगा लेते हैं,
1: हाँ
0: उसकी वजह से जो हमारी जो हेयर रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो
1: अच्छा
0: जो प्रोसेस में हेयर लॉस हुआ उसमें रूट्स हमारी इंटैक्ट थी पर हमने कुछ ऐसी चीज़ें लगा ली जिसकी वजह से डैमेज हो गए, तो
1: हाँ
0: जो बाल आने थे नॉर्मली ट्रीटमेंट के साथ वो भी नहीं आ पाएंगे, वहाँ स्कार्स बन जाते हैं।
1: अच्छा
0: स्कार जब एक बार हमारी स्किन में या हेयर में बन गया तो वो
1: हाँ
0: वाली रूट्स ख़राब हो जाती हैं जिसकी
1: अच्छा
0: वजह से हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती, तो
1: ठीक है
0: ऐसे तो वही बता रहे हैं कि ऐसे कुछ भी केमिकल्स ना लगा लें जिससे हमारे को बाद में पछताना पड़े।
1: जी। चलते चलते दो तीन और भ्रांतियाँ हैं, उनके बारे में भी थोड़ा निदान करें।
0: जी
1: क्या गंजा होने से, अगर हम गंजा हो जाते हैं, बाल बिल्कुल कटवा लेते हैं,
0: जी
1: क्या उससे दोबारा पूरे बाल आने की?
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं होता सर,
1: जी
0: जो हेयर ग्रोथ होनी है वो नॉर्मली हेयर में भी हो जानी है, गंजे होने से ऐसा कुछ फायदा नहीं होता।
1: जी दूसरी बात, क्या जब हम धूप तेज है, धूप तेज में निकल रहे हैं,
0: जी
1: तो उससे क्या बालों की सेहत पे फर्क पड़ता है?
0: जो भी सन रेज होती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, थोड़ा हार्मफुल रहती हैं।

0: रहती हैं, तो कोशिश रहे कवर करके जाएं, कैप रखें, टाई करके जाएं, लूज हेयर ना छोड़ कर जाएं, ब्रिटल
1: जी
0: हो जाते हैं, थोड़ा वीक हो जाते हैं हेयर
1: जी
0: कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर से।
1: जी और इसके साथ साथ में क्या ज़्यादा गर्म या ठंडा पानी सर पे डालने से बालों की हेल्थ पे असर पड़ता है?
0: नुकसान होता है जो हीट होती है, क्योंकि जो हमारा हेयर होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन जब हम
1: जी
0: एक्सेसिव हीट उस पर यूज़ करते हैं तो जो भी हमारा प्रोटीन होता है वो डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए
1: अच्छा
0: ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी हमें यूज़ करना चाहिए सिर के
1: जी
0: लिए, वॉश करने के लिए।
1: जी बिल्कुल। तो चलते चलते और कोई आपके मन में बात हो, कोई सुझाव देना चाहिए हमारे श्रोताओं को?
0: नहीं, बस अपने हेयर का हाइजीन का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, वो बहुत ज़रूरी है जो यंगस्टर्स के लिए है। डाइट नहीं अच्छा लेते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बाल ऐसे हो जाएं, तो इसलिए जो हम खाएंगे वही हमारी हेयर पर, स्किन पर दिखता है, तो इसलिए सबसे मेन ट्रीटमेंट होता है डाइट अच्छी रखें, लाइफस्टाइल अच्छा रखें।
1: जी
0: जी
1: तो डॉक्टर मोहित नागपाल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने गंजेपन की समस्या पर बहुत विस्तार से हमसे बात की।
0: जी
1: इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: थैंक यू जी, माय प्लेजर।
2: हमारे सेहत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गंजेपन की समस्या व समाधान विषय पर ये भेंट वार्ता डॉक्टर मोहित नागपाल के साथ। इनसे भेंट कर रहे थे विनय कुमार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। अब आप सुनेंगे दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मौसम काफ़ी सुहावना हो चला है और आपको भी गर्मी से कुछ ना कुछ राहत तो ज़रूर मिली होगी और लगभग बारिश हर जगह हुई है, तो ऐसे में मौसम ज़रूर अच्छा हुआ होगा आपके यहाँ भी। और यदि उमस भरी गर्मी है अब भी, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बारिशों का मौसम तो आ ही गया है, तो अब आपको ज़रूर राहत मिलेगी। और हम अक्सर करते रहते हैं इस मौसम में वृक्षारोपण के बारे में। तो भाई, वृक्षारोपण के तहत जो दिवस मनाए जाते हैं, इसमें वन दिवस भी है या फिर वन महोत्सव जो है उसके लिए सप्ताह भी मनाए जाते हैं, पखवाड़े भी मनाए जाते हैं और जगह जगह आयोजन किया जाता है पेड़ पौधे लगाने का, और पेड़ पौधे बांटे भी जाते हैं सरकारी स्तर पर। आम नागरिक भी इन पेड़ पौधों को ले सकता है और लगा सकता है। और देश भर में जो है वो वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया। स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय सोसाइटियों और सार्वजनिक स्थलों पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाते हैं और इनका उद्देश्य यही रहता है कि हरित क्षेत्र को बढ़ाया जाए और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए पहले से योजनाएं भी बनती हैं, बजट स्वीकृत होते हैं और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों पौधे लगवाकर अभियान की शुरुआत की जाती है। लेकिन चिंता की बात ये है, सोचने की बात ये है कि अधिकांश जो आयोजन हैं वो औपचारिकता तक ही सीमित रह जाते हैं, क्योंकि पौधारोपण के बाद उनकी देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर कोई नहीं निभाता। वास्तविक सफलता पौधों की संख्या में नहीं है, बल्कि उनको जीवित रख कर वृक्ष बनने में है। यदि लगाए गए पौधों को नियमित सिंचाई, सुरक्षा और कम से कम 5 वर्ष तक उचित संरक्षण न मिले, तो हर साल लाखों पौधे लगाने का दावा अर्थहीन हो जाता है। केवल अखबारों में समाचार देना या फोटो छप जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। सकारात्मक तो जब है जब हम पेड़ पौधों का बाद में भी लगाने के ध्यान रखें और उनके बड़े होने तक उनकी उचित देखभाल करें। आंकड़े प्रस्तुत करने की बजाय उनकी जीवित रहने की दर को सफलता का पैमाना बनाना चाहिए। कम पौधे लगें लेकिन उनमें से अधिकांश वृक्ष बने, तभी वन महोत्सव का उद्देश्य भी पूरा होता है, अन्यथा ये अभियान एक औपचारिकता या एक रस्म बनकर ही रह जाता है। तो श्रोताओं।

ज़रूरी नहीं है कि वन महोत्सव का सप्ताह बीत गया। ये पूरा महीना और अगस्त में भी आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये मुफीद समय होता है पौधे लगाने का, तो आप जहाँ भी आपको लगता है कि जगह है और वृक्ष पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं तो वहाँ ज़रूर लगाएं। इस मौसम में वो जल्दी से पनपेंगे और उसके बाद उसकी देखभाल भी आप करेंगे तो वो एक पौधे का एक वृक्ष का रूप लेंगे और उसको देखकर निसंदेह आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और जब धरती पर हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, तो हमारा जीवन कितना सुखद होगा और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे अपने पर्यावरण को बचाकर।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के दिन विशेष की। विश्व एलर्जी दिवस आज हम मना रहे हैं, और विश्व एलर्जी दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि इसके प्रभावों के बारे में बात की जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे कैसे बचा जाए इस बारे में भी बात की जाए। और विश्व एलर्जी सप्ताह भी मनाया जाता है, जो कि जून के महीने में मनाया जाता है, और विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और इस तरह ये दिन मनाने का उद्देश्य यही रहता है कि इस बारे में जागरूक हों, जानकारी सुनने वालों को मिले और वो इस सब परेशानियों से बचे रहें। एलर्जी की जब कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो पर्यावरण में मौजूद उन पदार्थों के प्रति प्रतिक्रिया हमारा शरीर करता है जो अधिकांश लोगों के लिए हानि रहित होते हैं। इन पदार्थों को एलर्जेन कहा जाता है और आमतौर पर धूल के कण, पालतू जानवर, पराग कण, कीड़े, फफूंद, खाद्य पदार्थ आदि जो है, और कुछ दवाओं से भी कई लोगों को एलर्जी होती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं एलर्जी के और सब में अलग अलग कारण ये हो सकता है। और भारत में तो वैसे भी जो जलवायु परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। कहीं व्यस्त महानगर हैं, समृद्ध वनस्पति है हमारे देश में, और कोई ना कोई कारण हमें किसी न किसी को प्रभावित कर सकता है। एलर्जी पैदा करने वाले कारकों की यहाँ कमी नहीं है। उत्तर भारत में देखें तो पराग के तूफानों से लेकर पश्चिम में धूल भरी आंधियां हैं और दक्षिण में नमी है और फफूंद से भरी मानसूनी हवाएं देश में एलर्जी पैदा करने वाले जो कारण हैं उनकी विस्तृत एक श्रृंखला है। यानी बहुत से कारण हैं एलर्जी पैदा होने के या किसी भी को भी एलर्जी होने के। कहीं प्रदूषण है, कहीं निर्माण कार्य चल रहा है या फिर भीड़ भाड़ है। निश्चित रूप से आंखों में खुजली और नाक बहने का ये सब कारण बनता है। जब भी आप अपनी यात्रा शुरू करें तो अपने क्षेत्र में पराग कणों और वायु की गुणवत्ता की जांच जरूर कर लें, क्योंकि किसी भी जगह पर जब हम जाते हैं यदि वहां की वायु ज़्यादा प्रदूषित होती है और यदि आप एलर्जिक हैं और जल्दी से आपको एलर्जी से आप प्रभावित हो जाते हैं तो आपको ऐसा हो सकता है। तो जहाँ कि वायु ज़्यादा प्रदूषित हो वहाँ जाने से आप बचें। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए मास्क, धूप का चश्मा, यहाँ तक कि टोपी भी आप पहन सकते हैं। बाहर से आने के बाद आपको नहाना चाहिए और अपने रहने की जगह को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, धूल कण वगैरह, जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं और आप लगातार छींक सकते हैं या फिर आपको स्किन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। यदि लक्षण लगातार बने रहते हैं तो सलाह के लिए किसी एलर्जी विशेषज्ञ से हमें ज़रूर परामर्श करना चाहिए। अपने आप से हम दवाई लेते रहते हैं, कोई ना कोई ट्यूब लेकर लगा लेते हैं, दवाई लेकर खा लेते हैं केमिस्ट से, उसकी बजाय यदि लगातार आप एलर्जी के शिकार हैं तो आपको संबंधित विशेषज्ञ से ही सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा लिविंग रूम है उसमें फिल्टर वाले अच्छे एयर प्योरीफायर का उपयोग हम कर सकते हैं ताकि घर के अंदर की हवा की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। अपने घर को हमें एलर्जी वाले जो नम कपड़े हैं या धूल वाली चीज़ें हैं उनसे सफाई रखनी चाहिए, उनसे मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि एलर्जी पैदा करने वाले कण फैलने के बजाय वहीं फंस जाते हैं। तो नमी हमारे घर में ना बनी रहे और धूल वगैरह ज़्यादा ना हो इसलिए साफ़ सफाई करते रहें। भारी पर्दे या खिलौने हैं जिनमें धूल ज़्यादा जमती है या ऐसी चीज़ें हैं जो घर में ज़्यादा आपने भर रखी हैं उनसे घर को थोड़ा सा मुक्त रखें। इसके अलावा पानी ज़्यादा पीना चाहिए। कहते हैं कि श्लेष्मा झिल्ली से नम रहती है और प्रतिक्रियाशीलता जो है एलर्जी के प्रति किसी भी चीज़ के वो कम होती है। तो पानी भी सही मात्रा में आप पीते रहें। तले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं या मीठे पेय पदार्थ हैं जो सूजन बढ़ा देते हैं, ऐसे खाद्य पदार्थों का कम से कम हमें खाने में प्रयोग करना चाहिए।

अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी का भरपूर, जो खाद्य पदार्थ हैं विटामिन सी से, उन्हें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जैसे छींक आना, खांसी, खुजली, त्वचा पर चकत्ते, सूजन, सांस लेने में कठिनाई, ये सभी लक्षण होते हैं एलर्जी के, और इनका समय पर परीक्षण यदि हम कराते हैं और चिकित्सा सहायता यदि लेते हैं तो संवेदनशीलता के अनुसार रोकथाम आपकी हो सकती है। लक्षणों के उभरने का समय और स्थान हमेशा ध्यान में रखें और डॉक्टर को इसके बारे में जानकारी दें, और जहाँ भी अच्छी सेवाएं हैं, टेस्ट की सुविधा है, आप अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। इससे पता चलता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। यदि आप खुद पहचान नहीं पा रहे हैं तो टेस्ट के माध्यम से आप पहचान सकते हैं और उससे फिर बचा जा सकता है, और बचना ही इलाज है। थोड़ी सी भी तैयारी बहुत काम आ सकती है, लेकिन यदि आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और साथ में आपको एलर्जी भी है तो ये एलर्जी आपको इन बेहतरीन नज़ारों से वंचित नहीं कर सकती। तो आप अपना ध्यान रखें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, एलर्जी वाली जगह जाने से बचें, आराम करें, पानी अच्छी मात्रा में पिएं, विटामिन सी का प्रयोग करें। इस तरह से आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा होगा तो फिर घूमना फिरना भी आपको अच्छा लगेगा।

श्रीतो, हर जगह को देखने का अपना ही अलग महत्व है और इन स्थानों पर हम जाते भी हैं घूमने के लिए। गर्मियों में हम पहाड़ों पर

जाते हैं घूमने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, और अलग-अलग ऐतिहासिक स्थलों की भी हम यात्रा करते हैं। और यात्रा के लिए क्यों, हमें काम के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है। हम चार पहिया वाहन का प्रयोग भी करते हैं, हम दो पहिया वाहन का प्रयोग भी करते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, अपने रोजगार के लिए निकलते हैं, घर से कई किलोमीटर दूर भी हम जाते हैं अपने काम के लिए, या फिर शहर के शहर में भी हम वाहन लेकर अपने काम करने के लिए जाते हैं। और ऐसे में बहुत सी दुर्घटनाएं भी कई बार घट जाती हैं, और आप रोज़ाना समाचार पत्रों में पढ़ते ही होंगे कि सड़क दुर्घटनाओं की जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। कहीं चार पहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें हम पढ़ते हैं, कहीं दो पहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें हम पढ़ते हैं। और सड़क दुर्घटनाओं में अक्सर जो दुपहिया वाहन हैं उनके जो चालक हैं उनकी मौतें ज़्यादा होती हैं, और आंकड़े ऐसा बताते हैं। शराब के नशे में वाहन चलाते समय अनियंत्रित वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, और हर रोज़ देश में सैकड़ों लोग वाहनों की चपेट में आकर मृत्यु का, अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। ये चिंताजनक है, और देश में आए दिन दुर्घटना में वाहन चालक घटनास्थल पर ही मारे जाते हैं। पिछले आंकड़ों को देखें, 2024 के जो आंकड़े आए उसमें 1,48,000 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 4,260 जो मौतें हुई वो दोपहिया वाहन चालकों की हुई। देश में बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण यातायात नियमों का पालन नहीं करना है। इसमें तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने, क्षेत्रीय इलाकों में सड़कों की मरम्मत के अभाव में भी दुर्घटनाएं होती हैं। शराब का सेवन करके वाहन चालक तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और फैसला सही समय पर नहीं ले पाते हैं, इसलिए भी दुर्घटनाएं होती हैं ड्रिंक करने के बाद। और उस समय नशे की हालत में गाड़ी जो है वो कई बार कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे अधिक 44.5% मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हुई। दोपहिया वाहन चालकों के सिर पर हेलमेट नहीं होने की वजह से हजारों मौतें हो रही हैं। और हमारे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, अक्सर युवा बच्चे तो हेलमेट का प्रयोग करना नहीं चाहते माता पिता के बार बार टोकने के बावजूद। इसके लिए दोपहिया वाहन चालकों को सावधानी रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि समय का कुछ पता नहीं होता, कब किस तरह से दुर्घटना घट जाए। वाहन चालकों को भी यातायात के जो नियमों का पालन है वो भी करना चाहिए। केवल कानून की बाध्यता नहीं बल्कि सभी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो यातायात के नियमों का पालन करे। और हम गाड़ी अक्सर कई बार घर से देर से निकलते हैं और समय बचाने के चक्कर में बहुत तेज़ चलाते हैं, और जब भी तेज़ गति होती है गाड़ी की तो वो कंट्रोल कई बार नहीं हो पाती। तो श्रोताओं यही कहेंगे कि जीवन अनमोल है, अपने जीवन का आप ध्यान रखें। आपका जीवन केवल अपने लिए ही नहीं है, ये देश के लिए भी है, ये आपके परिवार के लिए भी है, तो इसका ध्यान आप अवश्य रखें।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार।
1: और श्रोताओं, अब इन्हीं सब शब्दों, बातों, गीतों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये कार्यक्रम यहीं समेटने की। थोड़ी देर बाद आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनने के लिए।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का

0: सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप अंदाज गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता

0: में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
1: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
2: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
3: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि

0: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcomed the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। आज कलाकार थे राम कुमार खुंडा। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 9 बज चुके हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम मन भावन का।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये है दो रास्ते फिल्म का गीत।

और लीजिए अब सुनिए हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत, युगल स्वर मुकेश संग लता मंगेशकर के, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का।

और ये है मन भावन कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म रखवाला से आवाज लता मंगेशकर की है, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत फिल्म शबनम से। गीत को संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने, और इससे पहले आप सुन रहे थे पूजा के फूल फिल्म का गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ। संगीत निर्देशन मदन मोहन का था। युगल आवाज़ें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की।

मोहब्बत इसको कहते हैं। आइए सुने इस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। मजरूह के बोल हैं और संगीत खय्याम का।

और आइए अब सुने नीला आकाश फिल्म का गीत। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की हैं, गीत राजा मेहदी अली खां का और संगीत मदन मोहन का।

लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म प्यार ही प्यार के लिए, संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इसी गीत के साथ होता है संपन्न आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर। कुछ ही क्षणों बाद होंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबायो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
1: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय

0: 2 to 3 days. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. With this win, Argentina entered the quarterfinals of the tournament. In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out for a paltry score of 76 in 11.4 overs. With this win, England leads the match series 2-0. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है. मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर. स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हुआ है प्रातः के 10:10 और 15 सेकेंड. अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है. एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले जारी है. मीडियम वेव 262.47 मीटर आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर दोपहर 12:30 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अनुमति दीजिए.

मीडियम वेव 262.66 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 32 सेकंड हुए हैं। अब हमारी दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि

0: आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो

होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ,

0: यह बात और है कि इनके यहां पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ ये तो है, आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है, ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है, यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ लेकिन पूरी तैयारी के साथ, स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है, उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं, वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे

0: चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते। और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं।
5: अभी आपने सुना है प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और 1:05 पर आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ के।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय

0: क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वी के बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका

0: रुपए तथा राज्य सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के तहत स्वीकृत 318 कार्यों की सूची पंचायत घरों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। श्री पंवार ने कहा कि हरियाणा सरकार ग्रामीण अंचल के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री ने ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में विकास एवं पंचायत विभाग के दो प्रमुख पोर्टल जारी किए। इसमें समाधान पोर्टल के माध्यम से पंचायत शामलात भूमि पर वर्ष 2004 से पहले बने 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित कर पात्र ग्रामीण परिवारों को कानूनी मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वहीं हरियाणा ग्रामीण परियोजना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के जरिए ग्रामीण विकास कार्यों की चरणबद्ध प्रगति की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि ये दोनों डिजिटल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता, सुशासन और जन सुविधाओं को और मजबूत करेंगी। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर चौकस हो गया है। विभाग द्वारा सभी जिलों के चिकित्सा अधिकारियों को मानसून के मौसम के मद्देनजर पर्याप्त प्रबंध करने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ ने जिले के लोगों से वर्ष के मौसम में मलेरिया और डेंगू से बचने के लिए सावधानी बरतने की अपील की है।
1: प्रदेशवासी ने पूरा सहयोग करें, कहीं पे भी पानी रुकने ना दें। ज्यादातर पानी जो है वो घरों में पुराने टूटे हुए मटके होंगे, गमले होंगे या टायर्स पड़े रहते हैं छतों के ऊपर। कूलर्स की सफाई जरूर करें, जहां पानी इकट्ठा कर रखा है तो उसको बिल्कुल एक बार खाली कर दें, और खाली करके उसमें से जो भी लार्वा बन जाते हैं उन्हें सबको ड्रेन कर दें, क्योंकि यही लार्वा आगे बनकर डेंगू और मलेरिया जैसी उनको बीमारियां करेंगे।
0: उन्होंने बताया कि अभी तक पलवल जिले में मलेरिया के दो मामले सामने आए हैं। लोग एहतियात बरतें तो निश्चित तौर पर मलेरिया की बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि वर्तमान दौर में विद्यार्थियों का जीवन केवल किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पूरा जीवन डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में हमारे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के सर्वर पर मौजूद लाखों विद्यार्थियों का एकेडमिक डाटा, शोध पत्र और डिजिटल लाइब्रेरी को सुरक्षित रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज की चुनौती केवल व्यक्तिगत मोबाइल को सुरक्षित करने की नहीं, बल्कि हमारे पूरे शिक्षण तंत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की है। शिक्षा मंत्री कल उच्चतर शिक्षा निदेशालय और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर द्वारा संयुक्त रूप से डिजिटल इकोसिस्टम में व्यक्तियों की सुरक्षा विषय पर पंचकुला स्थित शिक्षा सदन में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित कार्यशाला में 7500 से अधिक प्रतिभागियों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह भागीदारी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज हमारा समाज साइबर सुरक्षा की गंभीरता को पूरी गहराई से समझ रहा है। कार्यशाला के समापन पर सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को ई सर्टिफिकेट दिए जाने की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने आह्वान किया कि प्रतिभागी यहां से केवल एक प्रमाण पत्र लेकर ना जाएं, बल्कि समाज में साइबर सुरक्षा दूत बनकर निकलें। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को हम बता देते हैं हमारे कार्यक्रम में पत्र भेजने का पता। कार्यक्रम आपके अनुरोध पर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक, ये पता है, इस पर हमें इंतज़ार

रहेगा आप सभी के पत्रों का, और आगे आने वाले कार्यक्रमों में हम आपको सुनवाएंगे आपकी पसंद का गीत। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमें बहुत से पत्र आप सभी के प्राप्त हो चुके हैं इसी पते पर, और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत शहनाई फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। साथ ही कीजिए स्वीकार सृष्टि का नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना शहनाई फिल्म का गीत। गीत के बोल लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतकार थे रवि। इस गीत को सुनने के लिए आप सभी के फरमाइशी पत्र हम तक पहुँचे। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता। हिप्पर सोगा ज़िला लातूर से आप हैं। उस्मान शेख, सायरा बानो शेख, दस्तगीर, फैज़ नबी, शाकिर इस्लामी, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर, सानिया शाकिल पठान, बिस्लामी शेख, गदर शेख। हिप्पर सोगा से कुछ और ये ज़िला नांदेड़ के श्रोता हैं, चांदनी अयूब सैयद, अमन सैयद और माहिरा सैयद। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका अनिष्का, तन्मय गजबीय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से ही रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिम्पल देवांगन। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ड्रीम गर्ल फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान और उत्तम जमधाडे। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार के सदस्य। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वासेरे। अगला पत्र हमें मिला है ज़िला जालना से नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विनी। जलगांव से वैशाली जमदाले, हरसुल सावंगी। औरंगाबाद से वैभव, सौरभ लोखंडे, भावसिंहपुरा औरंगाबाद से ही मेघराज, युवराज कोलते और रिधोरा देवी। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाएं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत।

ड्रीम गर्ल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी सुनने वालों की पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं दो अनजाने फिल्म से। इसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, कस्बा बरा।

हमारा ज़िला अम्बाला से आप हैं। रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जय प्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरन, गुरकीरत और गुरशब्द। अगला पत्र आपका है अर्धापुर से, दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, साध्वी। और परभणी से आप हैं गणेश हारगांवकर। अगला पत्र हमें मिला है वाकोडी, महाराष्ट्र से, उत्तम जमधाडे, स्वरा जमधाडे, आत्माराम आसोले, ललिता आसोले और सभी मित्र परिवार के सदस्य। और अगला पत्र हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बलिया से, ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय का। नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। महसौल सीतामणि बिहार के ये श्रोता हैं, अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, नवासा रहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा शाहीन, नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख। समस्तीपुर से आप हैं मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में दो अनजाने फिल्म का गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइस

0: ऑफिस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के पत्रों के साथ हम उपस्थित हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध को लेकर। अलीका डबवाली से अगला पत्र ये हमें मिला है। रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सर्वजीत रानी, सोनी, सोनू और रजनी, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर, बठेना से बालकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा हैं। अगला पत्र हमें मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी का, पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वलीउल्ला अंसारी और उस आसमा नाज अंसारी, चमन पार्क दिल्ली से हैं सोनम और अदीबा, सारीमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून और गुलफराज भागलपुरी। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत। गीतकार हैं इंदीवर और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे इंदीवर ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी द्वारा तैयार किया गया। कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं ईमानदार फिल्म का गीत। इसे गाया है आशा भोसले ने, गीत के बोल लिखे हैं प्रकाश मेहरा ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार से हैं, खैल बाज़ार पानीपत से आप हैं, नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा। अगला पत्र है सच्चा खेड़ा से, मोक्ष सुरेश और वेद विहारी आप सभी ने ये पत्र हमें भेजा। और बीसलपुर से, ज़िला पीलीभीत से आप हैं, विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा। अनारकली बाज़ार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप और आरजू जाजौरिया। शेरकोट ज़िला बिजनौर से आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आइए आप सभी को सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ईमानदार फिल्म का ये गीत।

ईमानदार फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत के बोल लिखे प्रकाश मेहरा ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। कार्यक्रम आपके अनुरोध में अब बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आप सभी के अनुरोध पर कार्यक्रम का अगला गीत। इसे हमने लिया है फिल्म जुदाई से, गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सभी जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन प्रवीण, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। अगला पत्र है रावल करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया का भेजा हुआ। गांव मटौर ज़िला कैथल से आप हैं रामदिया, नीलम बोध सी आए, अजय टाक, विजय टाक और इनके साथ हैं तमन्ना। हिसार से अगला पत्र हमें मिला है दिलबाग पातर, बलजीत और बलदेव पातर का। करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी और सुनीता शर्मा, आप सभी का पत्र हमें मिला है। बलियाली से आप हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता रानी, कमल कुमार, गर्विश और तमन्ना बंसल। आइए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवाएं जुदाई फिल्म का ये गीत।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे जुदाई फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: कार्यक्रम आपके अनुरोध आप इस समय सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं धर्मात्मा फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और कंचन ने, गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और संगीत तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद करने के लिए आप सभी के पत्र हमें मिले हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद अभय, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग और मीका बिरक हैं। जतुका किशनपुर से हैं आलम शेख, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं मोहम्मद वकील राही और हिना कौसर, इनके साथ हैं फिरोज आलम और नाज प्रवीण। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना, निवान शर्मा। माया ये पत्र हमें मिला है धामनी मानोरा से, तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश आयोल, आदेश गुलशन डेरे, शब्बीर भाई और इनके बहुत से साथी इनके साथ हैं, किरण डेरे, प्रज्वल और दादुल्या डेरे भी। ज़िला वाशिम से आप हैं विशाल कवाड़े, तुलसीराम, ललिता पायल और आरुष कवाड़े। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अगला पत्र मालेगांव से हमें मिला है आप सभी का दत्ता घायाल, सुनीता बाई घायाल, सानिका और गजानन घायाल का। भटिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां आप सभी हैं लक्सर हरिद्वार से। आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आपको सुनवाते हैं धर्मात्मा फिल्म का ये गीत।

आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म का गीत। इसी गीत के साथ ही आपके अनुरोध पर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: following the U.S. attacks on its Hormozgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The reported targets included Salman Port, the U.S. 5th Fleet headquarters in Bahrain, and the Al El Salem Air Base in Kuwait. Iranian media also quoted an IRGC spokesperson as saying that the country's air defense systems had shot down a U.S. MQ-9 drone over Bushehr province. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. Global crude oil prices rose more than 2% today as renewed hostilities between the United States and Iran threatened to shatter the fragile ceasefire that had brought some relief to global energy markets. Brent crude was trading nearly 2.3% up at $75.87 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 2.2% up at $71.96 per barrel when reports last came in. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% down in the afternoon session today amid renewed geopolitical tensions in the West Asia. The Sensex plunged 590 points to 77,591, while the Nifty shed 185 points to 24,213 when reports last came in. And in football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in 3rd India-Australia Annual Summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की कहा मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को

0: आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रामबानंद मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का

0: पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान

0: ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। देखो मानसून ने अपना हरियाणा में दस्तक दे दी है और किसान भाई भाई अपने जो बुआरे के काम हैं या रुपाई के काम हैं उन पर तल्लीनता के साथ है जुट भी रहे हैं। खास तौर पे हम धान की बात करें तो धान की भाई प्योर की रुपाई भाई जोर शोर से चल रही है और जीते थोड़ी बूंदाबांदी हुई है या पानीपात के साधन कम है या हम कहें कि भाई अपना जो बरानी इलाका

0: है, उसमें हमें ज्वार की बिजाई, भाई अपनी अरहर की बिजाई, सोयाबीन की बिजाई या बाजरे की बिजाई, इन काम विकल्प ले रहे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जित पानीपात के साधन अपने द्वारा भरपूर मात्रा में हैं उससे जगह हमने धान की रोपाई करनी है। अगर पानीपात के साधन अच्छी प्रकार के नहीं हैं अपने द्वारा, तो फिर हमने दूसरी जो फसलें हैं मोटे अनाज वाली हम वो ले सके हैं, जिसमें पानीपात भी कम लगेगा, दूसरी लागतें भी कम हैं और अपनी जो फसल चक्र है वो भी साथ में बढ़िया रह जाएगा। जितने पानीपात के साधन ज़्यादा हैं या फिर जमीन में जल स्तर थोड़ा ऊंचा है, यानी कि भाई चोहे की समस्या है, ऊड़ा लगाना हमारी समस्या है, तो ऊड़ा हमें धान की रोपाई कर सके हैं। और धान की रोपाई कर देना भाई सावधानी बरतें, भाई पानीपात ठीक ठाक है तो अपना करें, और भाई कौन सी हमने किस्म लेनी है, कौन सी हमने पौध की रोपाई करनी है, उसका पहले से हम अंदाज़ा लगा लें ताकि बाद में फिर कोई दिक्कत ना आवे। साथ साथ में चल रहा है अपना रसायन के छिड़काव का भी टाइम चल रहा है, चाहे वो गन्ने की बात करें या फिर कपास की बात करें, तो कपास की फसल में भी भाई देखते रहना हमने कि हमारी फसल में किस प्रकार का के अंदेशा है, हमने कौन सा छिड़काव करना है। गन्ने की फसल की बात करें, मीलीबग है, भाई काली कीड़ी है या और तरह का कोई कनसुए का है प्रकोप है, तो उसमें भी हम छिड़काव, तो उसमें थोड़ा ये देख लें कि भाई थोड़ा साफ मौसम हो, उस हिसाब में हम छिड़काव करें। बाकी सिंचाई का अपना ध्यान रखें और खरपतवार उनमें ना पैदा होने दें, क्योंकि खरपतवार बहुत सी समस्याएं ने जन्म दे हैं, वो कीड़े बीमारियां ने और कीड़न तक खास तौर पर आकर्षित करे है खरपतवार, क्योंकि और कोई ऐसी फसल भी है नहीं, तो अपने जो कपास की है या फिर गन्ने की फसल है, ये दो फसलें ज़्यादातर हैं, या फिर अपनी साग सब्जी वाली फसलें हैं, तो इनने पर कीड़े आकर्षित होकर आवें, तो हमने शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी फसल में खरपतवार मुक्त रखें और हांडते फिरते रहें, देखते रहें कि भाई कोई इस फसल में किसी प्रकार के कोई कीड़े का आक्रमण तो नहीं है। इसी प्रकार और भी बहुत सारी जो साग सब्जी वाली फसलें हैं उनका भी भाई बुआरे का टाइम या रोपाई का टाइम ये शुरुआत हो गई है, तो धीरे धीरे करके ना अपना हमने सारे काम निपटाने हैं। लेकिन बात करें थोड़ा, हाँ देखो मौसम भी परिवर्तनशील है, गर्मी भी बतेरी पड़ी है, ईब जो है एक दो दिन से मौसम थोड़ा ऐसा होया है कि भाई थोड़ा हाँ रात मिली है, तो इस हिसाब में देखते हैं हमें थोड़ा पशुओं का भी हमने अच्छी तरीके ध्यान रखना है कि भाई किस प्रकार का उन्हें चारा दें, दाना दें संतुलित मात्रा में, ताकि जो उनकी दूध उत्पादन क्षमता है वह ठीक ठाक बनी रहे। तो प्रोग्राम आज थोड़ा छोटा है, इसलिए पहले भैया का मनोरंजन करा दें, बाद में फिर चर्चा करेंगे पशुओं के चारे दाने की।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

भैया दशमी भैया नरागनी गायक कलाकार थे मास्टर सतबीर सिंह भैंसवाड़ जी और उनके साथी। और वह जेकर था अपना पशु के लिए संतुलित चारा दाना। भाई अगर चुहार हो रही है पशु के लिए ये भरिया चारा बतेरा हो जाए तो वह सूखी न्यू की न्यू निखालस ना दें, उसमें सूखा चारा ज़रूर मिल जाए। और पशुओं के लिए जो हमें दाना तैयार करे हैं भाई, जो बखरे बाहर का मोल लिया हो तो उसने छोड़ कर अगर घर पर हम अपना संतुलित चारा दाना बना लें तो वह पशुओं के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसमें हम कई तरह के अनाज मिला सकते हैं भाई, गेहूँ का चोकर मिला सकते हैं भाई, उसके अंदर चने की किनकी मिला सकते हैं, सरसों मिला सकते हैं थोड़ी बहुत भाई, अपना बाजरा मिला सकते हैं, और उसमें जो है 1 किलो नमक ज़रूर मिलावें। जो उस हिसाब से यानी कि हम रेशियो बना लें कि 100 किलो दाना एक बार तैयार कर लें। और खनिज मिश्रण भी उसमें साथ में अगर मिला लेंगे तो और बहुत बढ़िया रहेगा। और खनिज मिश्रण तय अगर हम बाहर का भी चारा दाना दे रहे हैं तो उसके लिए भी खनिज मिश्रण हर पशु को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु में बहुत से तत्वों की ज़रूरत तो है और वह तत्व जो है खनिज मिश्रण के बिना पूरे नहीं हो पाते। चाहे वो छोटा पशु कारडू बाछड़ू क्यों ना हो, थोड़ा मोटा 20-1 ग्राम पर पशु को यानी कि छोटा जो कारडू बाछड़ू उसको भी देना बहुत ज़रूरी है, और जो बड़ा पशु है उसके लिए 50 ग्राम खनिज मिश्रण रोज़ाना अगर दिया जाए तो पशु में ख़ास तौर पर कोई समस्या नहीं आ पाओगी। और सही तरीके से तो उसकी चराई पिलाई का ध्यान रखा जा भाई, खिलाई पिलाई का सही तरीके ध्यान रखेंगे तो आगे चार के फिर जो दूध उत्पादन की क्षमता है उस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ साथ में हरा चारा साथ में जो है चारा दाना और घर का बना और उसमें कोई मिलावट का अंदेशा नहीं होता, घर का बड़ा शुद्ध बना जा है तो उसके साथ में खोर मऊ भी हम कोई नमक का डला भी धर सके हैं पशु चाटें जा, क्योंकि बहुत से तत्वाएँ फिर कमी हो जाता पशु दीवार चाटनी बन शुरू कर दे है या और जो कपड़े लते हैं वह खाने शुरू कर दे है, तो इन चीज़ों का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। अपने पशु ने स्वस्थ बना के ने घर का चारा दाना देंगे जब वह पशु स्वस्थ बनेगा और जब उसकी दूध उत्पादन क्षमता भी बनी रहेगी। और भाई कुछ समय रह गया था सांझ का जिक्र करेंगे फिर इस बारे में, तो इन चाल सारे बाण भैया ने राम राम।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें एक बहू है जिसका नाम शशि है। शशि एक गरीब परिवार की है। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शशि अपने नाम की तरह ही बहुत शांत है। शशि अपने ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखती है। हर छोटे बड़े काम वो बहुत लगन से करती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। उसकी सास शशि को सम्मान नहीं देती है जो एक बहू को मिलना चाहिए। बस अपनी बड़ी बहू को उसकी गरीबी के ताने सुनाती रहती है। सास और ननद की सोच उस वक्त ज्यादा गिर गई जब शांति देवी अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में कर देते हैं। उनका छोटा बेटा एक सरकारी नौकरी पर

काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए शांति जी और उनकी बेटी अंजलि अपने छोटे बेटे विजय और छोटी बहू की बड़ाई करते नहीं थकती थी। घर का सारा काम शशि यानी बड़ी बहू करती थी। छोटी बहू तो बस सारा दिन फोन और किटी पार्टी और घूमने फिरने में लगी रहती, क्योंकि वह एक अमीर घर से थी तो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। और विजय ने भी बोल दिया था कि मेरी बीवी को काम करने की आदत नहीं है और ज्यादा परेशानी होती है तो एक नौकरानी रख लो। तब शांति जी ने कहा, नौकरानी की क्या जरूरत है, घर में काम ही कितना है, जो काम वाली रखे, पहले भी तो घर के काम होते थे, अब भी हो जाएंगे, सिर्फ एक छोटी बहू ही तो ज्यादा हुई है घर में, एक के आ जाने से काम ही कितना होता है, जो अलग से काम वाली रखे। सास और पति के शय पाकर तनुजा अब और भी बेफिक्र हो गई थी और कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, हर काम के लिए दो टुक जवाब दे देती थी। पहले की तरह शशि काम करती रही, किसी से कोई शिकायत ना करती। श्रोताओं, आपको अमीर और गरीब के भेदभाव को दर्शाने वाली कहानी को सुनाने के लिए पेश करते हैं एक नाटक।

0: हेलो दीदी, कैसे हो आप?
1: हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
0: मैं भी ठीक हूँ। दीदी, कल आपके भतीजे का जन्मदिन है, आप आ सको तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
1: पर भाभी, मैं कल नहीं आ पाऊंगी, आपके जिया जी को कुछ जरूरी काम है, छुट्टी नहीं मिल पाएगी।
0: ठीक है दीदी, लेकिन कोशिश करना आने की।
1: देखती हूँ। अच्छा भाभी, बाद में बात करती हूँ, थोड़ा काम है।
2: थोड़ी देर में अंजलि अपनी माँ को फोन करती है वहाँ के बारे में जानकारी लेने के लिए कि घर में कल का क्या प्रोग्राम है।
1: हेलो माँ, कैसी हो आप? घर में सब ठीक है ना?
3: हाँ बेटा, सब ठीक है। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना?
1: माँ, बड़ी भाभी का फोन आया था, बोल रही थी चीकू का जन्मदिन है, जरूर आना। माँ, क्या कोई बड़ी पार्टी रखी है?
3: अरे नहीं बेटा, ये कहाँ बड़ी पार्टी रखेंगे, बस घर में ही केक काटेंगे। तू रहने दे, फालतू में आने जाने का खर्चा ही होगा।
1: हाँ माँ, इसलिए मैंने भी बहाना बना दिया कि आपके जिया जी को जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी।
3: ठीक किया बेटा तूने।
1: हाँ माँ, मेरा भी बिल्कुल भी आने का मन नहीं है, कुछ लेती देती तो है नहीं, बस एक शगुन का लिफाफा पकड़ा देती है और बस खाना खिला देती है। पिछली बार जो साड़ी दी थी वो आउट ऑफ फैशन थी, इससे अच्छा तो वो ना ही देती।
3: तुम ठीक कहती हो बेटी, है भी तो गरीब घर की, उसके घर से तो कुछ आता नहीं, तो क्या पता होगा लेन देन क्या होता है, तू रहने ही दे आने को।
2: और दोनों फोन रखते हैं। अगले दिन चीकू का जन्मदिन बुआ के इंतजार में चला गया, परंतु बुआ नहीं आई। शशि सारा दिन काम में लगी रहती है पर कभी किसी से शिकायत नहीं करती। और एक दिन शशि की माँ की तबीयत खराब हो गई, शशि अपने मायके चली गई और शांति जी ने अपनी छोटी बहू को काम करने के लिए कहा तो तनुजा ने साफ साफ मना कर दिया।
3: बेटा तनुजा, एक कप चाय बना लो और हाँ, नाश्ता भी बना देना।
0: क्या मैं और नाश्ता बनाऊंगी? ये सब मेरे से नहीं होगा।
3: अरे ये क्या बात हुई, तुम नहीं बनाओगी तो और कौन बनाएगा?
0: वो मुझे नहीं पता, पर मैं नहीं बनाऊंगी, बस कह दिया।
4: अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है?
3: अरे कुछ नहीं बेटा, मैंने तो बस तनुजा को इतना ही बोला कि नाश्ता बना लो, पर ये तो मुझे ही धमकाने लगी।
0: देखो विजय, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये काम वाम मैं नहीं करने वाली।
4: अरे माँ, आप इतनी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? माँ, तनुजा नाश्ता नहीं बनाना चाहती तो क्या हुआ, आप भी तो बना सकती हो ना।
3: क्या मैं इस उम्र में काम करूं?
4: तो क्या हुआ माँ? और माँ, अगर तुम नहीं बना सकती तो एक काम वाली रख लो, पर ये चिक चिक बंद करो प्लीज।
3: ठीक है बेटा।
2: कुछ दिन बाद जब शशि अपने मायके से घर वापस आती है तो सास को काम करते हुए देखती है। जल्दी से अपने कमरे में जाकर ड्रेस चेंज करके अपनी सास शांति देवी को मना करती है और खुद सारा काम करने लगती है। सास ये सब देखकर और अपने द्वारा किए गए बर्ताव जो उसने आज तक शशि के साथ किया था उसके लिए शर्मिंदा होती है। अगले महीने शांति जी के छोटे

0: बेटे विजय और बहू तनुजा की शादी की पहली सालगिरह थी। ननद अंजलि बहुत उत्साहित थी कि उसके छोटे भाई और भाभी जरूर कोई बड़ी पार्टी देंगे, परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया था। अंजलि ने खुद ही अपनी माँ को फोन किया।
1: हेलो माँ, तुम कैसी हो? माँ, छोटी भाई और भाभी की सालगिरह आ रही है, क्या घर में पार्टी नहीं होगी?
2: पता नहीं बेटा, पर मैंने सुना तो था, वो फोन पर होटल बुक करने की बात कर रहे थे।
1: अच्छा, लगता है कोई सरप्राइज पार्टी रखेंगे। मैं तो जरूर आऊंगी, मैंने भाई के लिए शर्ट और भाभी के लिए एक सूट लिया है गिफ्ट के लिए।
0: बिना बुलावे का इंतजार किए अंजलि छोटी भाभी की सालगिरह के लिए अपने मायके पहुंच जाती है और तनुजा के कमरे में जाकर सालगिरह की बधाई देने के लिए जैसे अंजलि ने तनुजा को गले लगाना चाहा, उसने हाथ से रुकने का इशारा किया।
3: अरे अरे दीदी, अभी अभी तो मैं बाल सेट करवा के आई हूँ।
1: ओ सॉरी सॉरी भाभी, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाभी, आप लोगों ने तो बुलाया ही नहीं, लेकिन मैं ही आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए आ गई।
3: थैंक्स दीदी, वो हमने बाहर का प्रोग्राम रखा था तो किसी को बुलाया नहीं। थोड़ी देर में आपके भाई आने वाले हैं, फिर हम दोनों होटल के लिए निकल जाएंगे।
1: हम दोनों? मतलब आप लोगों ने कोई पार्टी नहीं रखी है?
3: दीदी, पार्टी तो रखी है, लेकिन हमने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बुलाया है।
1: और फैमिली?
3: अरे दीदी, वो क्या है ना, वहाँ ड्रिंक वगैरह होगा तो फैमिली के बीच कम्फर्टेबल फील नहीं होगा।
1: पर भाभी।
3: और हाँ, हम आप सबके लिए खाना ऑर्डर कर देंगे, आप सब खा लेना और हमें आने में देर हो जाएगी।
4: तनुजा, तुम रेडी होगी या नहीं, जल्दी करो।
3: हाँ मैं रेडी हूँ।
1: पर भाई।
4: क्या हुआ अंजलि?
1: भाई, पार्टी तो घर में होनी चाहिए, या सभी को यहीं बुला लो।
4: अंजलि, क्या कह रही हो तुम?
1: भाई, बड़ी भाभी और भैया भी तो घर में ही पार्टी करते हैं और पूरी फैमिली इंजॉय करती है।
4: अरे पूरा साल फैमिली के साथ ही तो रहते हैं, और एक दिन हम बाहर पार्टी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हाँ अंजलि, बने बनाए मूड को खराब मत करो।
1: क्या मैं आपका मूड खराब कर रही हूँ? बड़े भाई भाभी ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं।
4: अंजलि तुम जाओ, नहीं तो हमें पार्टी के लिए देर हो जाएगी।
1: ठीक है, मैं जा रही हूँ। और अंजलि सोचने लगती है और माँ के पास जाकर सारी बात बताती है कि किस प्रकार छोटे भाई और भाभी ने फैमिली के साथ शादी की सालगिरह ना मनाकर दोस्तों के साथ होटल में जाकर पार्टी करना सही समझा। माँ, बड़ी भाभी ने तो आज तक परिवार के बिना कभी कोई सालगिरह और कोई जन्मदिन नहीं मनाया। केक भी माँ के हाथों से ही कटवाती है और कितना आदर और सम्मान से बुलाती है। और एक हम है जो उसके बुलाने पर नखरे करते हैं, और छोटी भाभी ने कितनी सहजता से बोल दिया फैमिली के बीच कंफर्टेबल फील नहीं होगा।
2: अरे बेटा, तेरी बड़ी भाभी ना हो तो कोई हमें रोटी भी ना दे, और एक हम है जो उसकी कदर ही नहीं करते।
1: हाँ माँ, तुम ठीक ही कहती हो, आज मैं भी अपनी गलती और बड़ी भाभी के साथ किए हुए व्यवहार से शर्मिंदा हूँ।
0: और तनुजा और छोटा भाई विजय भी तैयार होकर होटल के लिए चले जाते हैं। शांति जी और अंजलि उनका मुंह देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद ऑर्डर किया हुआ खाना भी आ जाता है, लेकिन उनके गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। तभी बड़ी बहू शशि ने आकर पूछा,
5: दीदी, माँ, आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना ठंडा हो रहा है।
2: बहू, वो मेरे पेट में ना गैस बन रही है, मैं ये भारी तला हुआ खाना नहीं खा सकती। बेटा, तुम मेरे लिए दलिया बना दे।
5: जी माँ जी, ठीक है, मैं अभी बनाकर लाती हूँ।
1: भाभी, मैं भी दलिया ही खाऊंगी, मेरे लिए भी दलिया बना दो, ये खाना बहुत तीखा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा।
0: शशि मुस्कुराते हुए रसोई में गई और दलिया बनाकर ले आई। आज वो दलिया दोनों माँ बेटी को बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें शशि का अपनापन और सम्मान जो मिला था।

श्रोताओं, हम किसी की भावना और अपनेपन को दौलत से नहीं माप सकते। शशि गरीब घर की जरूर थी, परंतु उसमें सबके लिए सम्मान की और आदर की भावना थी। हमें कभी भी किसी को उसके पैसे या पोशाक देकर सम्मान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहार और उसके अच्छे कार्य को देखना चाहिए। श्रोताओं, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।

इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 और 15 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवा श्रोताओं के मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युवा संसार से।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को आपके साथी हर्ष का नमस्कार
1: और आप सभी साथियों को महिमा का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे विषय आत्मनिर्भरता पर। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वही सफलता की नई ऊंचाइयों को छूता है। और आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने बल, अपनी मेहनत और अपनी क्षमता पर विश्वास करना। आज के समय में आत्मनिर्भरता केवल एक विचार ही नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है। जब हम अपने देश में बने सामान का उपयोग करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, मेहनत करते हैं और ईमानदारी से अपने काम करते हैं, तब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आत्मनिर्भरता हमें आत्मविश्वास, साहस और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाती है और साथ ही साथ ये भी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए बल्कि धैर्य और परिश्रम से आगे बढ़ना चाहिए।
1: और दोस्तों, जब देश का हर नागरिक अपने कार्य को ईमानदारी, दक्षता और आत्मविश्वास के साथ करता है तो राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से सशक्त बनता है। और यही भावना आत्मनिर्भरता की जो है वो भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी साकार करती है। आत्मनिर्भरता एक वो शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी पहचान स्वयं बनाने का साहस देती है। आत्मनिर्भरता अपने जीवन की आवश्यकताओं को, अपने जीवन के निर्णयों को और जिम्मेदारियों को स्वयं संभालने की क्षमता समझाती है।
0: साथियों, आज है बुधवार का दिन और आज के काउंसलिंग कार्यक्रम में हमारा विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली का युवाओं के करियर में योगदान। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुनील सिंह, रजिस्ट्रार चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, और इनसे बातचीत कर रही हैं डॉक्टर भूमिका शर्मा।
2: आकाशवाणी के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील कुमार, कुल सचिव चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। आज हम सर के साथ चर्चा करेंगे भारतीय ज्ञान प्रणाली की युवाओं के करियर में भूमिका। सर, आपका स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी परिवार का। मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इस विषय पे उन्होंने मुझे ये मौका दिया बात करने का। पूरे आकाशवाणी परिवार का दिल से आभार और धन्यवाद।
2: सर, आपसे पहला प्रश्न कि आज का जो युवा है उसके पास बहुत सारी दिशाएं हैं, आधुनिक युवा है, लेकिन इन दिशाओं के मध्य और आज की जीवन शैली के मध्य भारतीय ज्ञान प्रणाली एक युवा के जीवन में किस प्रकार प्रासंगिक है?
3: देखिए, भारतीय

0: ज्ञान प्रणाली युवाओं के साथ अगर हम पीछे की बात करना चाहें तो पहले से ही जुड़ी हुई है। एजुकेशन को थोड़ा सा अगर हम डिफाइन करके चलें तो एजुकेशन में हम एक चीज़ को लेते हैं कि एक प्रोसेस होती है लर्निंग की, और उस लर्निंग में हम जब कोई इन्फॉर्मेशन, कोई थॉट्स, कुछ स्किल एक्वायर करते हैं तब जाके वो बनती है। बट भारतीय ज्ञान प्रणाली इन सब का एक कॉम्बिनेशन, एक ब्रिज का काम करती है कि बच्चे को क्या सीखना चाहिए, क्या वो सीख रहा है और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करती है भारतीय ज्ञान परंपरा, जिससे बच्चे को मार्गदर्शन मिलता है कि उसको ये विषय चूज करना चाहिए और इससे इसको ये फायदा होगा। तो इसलिए भारतीय ज्ञान प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पीछे की बात करें, थोड़ा सा परिवार की बात करें, तो हमारे वेद, उपनिषद और पुराण जितने भी रहे हैं, उस वक्त जब हमारे संस्कारों में उनको डाल दिया गया था तो हमें डायरेक्शन की जरूरत उन संस्कारों के माध्यम से मिल जाती थी। बट आज के टाइम जो युवा है वो, उसके पास इन्फॉर्मेशन बहुत है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उसके पास देखने के लिए बहुत कुछ है, सोचने के बहुत कुछ है, बट उनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। उस डायरेक्शन के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा का और प्रणाली का उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा या प्रणाली दोनों को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये।
1: आज के दिन जब एक विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट आता है तो उसके सामने करियर ऑप्शंस होते हैं और सपने होते हैं। जैसे घर में एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके सामने पूरा जीवन होता है, तो माँ उसको ये नहीं बताती कि मैं तुझे संस्कार सिखा रही हूँ, माँ उसको आदत सिखा देती है। तो विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर एक युवा के जीवन में भारतीय ज्ञान प्रणाली का समावेश किस प्रकार हो सकता है और कितना हो चुका है?
0: जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप से सीखता है, बड़ा होकर गुरु के पास जाता है, गुरु से स्कूल स्कूलिंग के बाद वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी में आता है, तो बहुत सारे थॉट्स उसके मन में पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे विषय उसके मन में आ जाते हैं, और उन थॉट्स और विषयों के बीच में वो उलझ जाता है। उसको मार्गदर्शन जो चाहिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं मिल पाता। उसके पीछे सिर्फ यही है कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी में जितना हम इन्वॉल्व होते जाते हैं, टेक्नोलॉजी का मतलब अच्छी बात है, इनोवेशन, इनोवेशन हमें मिल जाता है, साइंस हमें इनोवेशन दे देती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनोवेशन के टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम आगे भी बढ़ सकते हैं, हमें उस चीज़ का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। बट बात यह है कि आप मल्टी डायरेक्शनल हो जाते हैं, बहुत सारे विषय आपके सामने आ जाते हैं। कभी आपको डेटा साइंस का स्कोप दिखता है, कभी आपको सॉफ्टवेयर का स्कोप दिखता है, कभी आपको लगता है कि मुझे आईएएस बनना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चा उस लेवल पे आके इस लेवल पे कंफ्यूज हो जाता है, और उसके साथ और बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं। चैलेंजेस जैसे आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंजेस नशे का है, वो गलत संगत में चला जाता है तो शायद नशे की तरफ भी चला जाता है, और नशा तो मोबाइल का भी है, एंड्रॉयड फ़ोन का भी है, वो कुछ गलत चीज़ों में चला जाता है तो वो एंड्रॉयड फ़ोन के उनके साथ जुड़ जाते हैं। आप देखिए कितना साइबर क्राइम आज के डेट में है, बच्चा उसका भी शिकार हो जाता है। ये मल्टी डायरेक्शनल चीज़ें हैं, जो मल्टी थॉट्स हैं, जो मल्टी मैसेजेस, इन्फॉर्मेशंस जो मिलती है, जो डेटा बच्चे को मिलता है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला के उसको सही आत्मचिंतन के साथ उसके ऊपर निर्णय करना, ये एक भारतीय ज्ञान प्रणाली का विषय रखा गया है। और इसमें हम कोशिश करते हैं विश्वविद्यालय में टाइम टू टाइम बच्चों की काउंसलिंग करें, टाइम टू टाइम बच्चों के साथ जुड़ने की बात करें। जैसे सिंपल सी बात मैं कहता हूँ, हम सिखा तो देते हैं, पूरा विषय हमारा परिवार है, उसके लिए क्या करना है वो तो विषय हम नहीं बताते ना, लेकिन हम विश्वविद्यालय में उन बच्चों के साथ मिलकर पौधारोपण करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदा होता है। आप गर्मी के टाइम पे पक्षियों को पानी पिलाने की ड्यूटी बच्चों को लगा देते हैं, साथ में हम लगते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है, तो इन्वायरमेंट, जीव की रक्षा करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटी हम यूनिवर्सिटी में करते रहते हैं, और बच्चे बच्चों के साथ नहीं, हम टीचर्स के साथ भी करते हैं। जैसे पीछे हमने एक 7 दिन की इन हाउस वर्कशॉप की, शिक्षक से गुरु की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। पहले गुरुकुल होते थे, उस गुरुकुल में हम जो चीज़ें सिखाते थे वो शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कारों पे भी बड़ा जोर देती थी। वही चीज़ हम कोशिश करते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षक से गुरु की तरफ लौटने का एक विषय रखना चाहिए, और बच्चों को गुरु और शिष्य वाले रिश्ते की तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। यही हमारा एक उद्देश्य है कि हम यूनिवर्सिटी में जितना हमारे पास टाइम है उस टाइम में एक बच्चों को अपने साथ अच्छे वातावरण में इन्वॉल्व करके उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं कि उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो भविष्य है, वो एक सुरक्षित हाथों में जाए और वो समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। इसी उद्देश्य के साथ हम यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बहुत ही बढ़िया सर। सर, हमारे दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के थॉट्स आते हैं, और जैसे समुद्र

0: मंथन में हुआ, अमृत भी आया और विष भी आया। तो आज के युवा के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है करियर सिलेक्शन के टाइम पर, वो ये है कि वो चुने क्या, उसके लिए पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच एक बैलेंस रखने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार अपनी अहम भूमिका निभाती है?
1: देखिए, आपने बड़ा गहरा विषय मेरे सामने रखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। भारतीय ज्ञान प्रणाली सबसे पहले कहती है कि जैसे आत्म मंथन होता है, वैसे ही जब हम इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की स्टेज पे लेके जाते हैं, तो बच्चे को सबसे पहले जो विषय उनके दिमाग में आ रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को साथ लेके चलना चाहिए कि अगर ये करेंगे तो इसका ये फायदा है, ये करेंगे तो इसका ये नुकसान है। बट हमें उस एंगल से नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये लगता है कि मैं इसी डायरेक्शन में जा सकता हूँ और मुझे इसकी पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी नहीं देखनी, वो एक गलत विषय हो जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे 19वीं सदी अगर मैं बात करूँ यूके की थी, 20वीं सदी अगर मैं बात करूँ यूएस की थी, तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी हमारी है, हमारे संस्कारों की है, भारत की है। और उस भारत के संस्कारों के साथ देखिए ना, आप विश्व में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि 21 जून अगर योगा डे के ऊपर भारत ने दिया ना उसको, तो ऐसे ऐसे विषयों को साथ लेके अगर हम चलते हैं, युवाओं को मल्टी डायरेक्शनल सोच के देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये विषय एक ले लिया तो इसमें सिर्फ इसी लाइन में, अगर कल वो लाइन फेल भी हो सकती है, रिसेशन भी आ सकता है उस लाइन में, तो बच्चे के पास मल्टी टैलेंटेड, तभी तो एनईपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। एनईपी से यही चीज है कि बच्चा एक डायरेक्शन में नहीं, मल्टी डायरेक्शनल जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ले सकता है, वो किसी में भी काम कर सकता है। तो इसलिए बच्चों के लिए एनईपी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनके जीवन में। और जो आपने विषय पॉजिटिव नेगेटिव वाला रखा, तो मुझे लगता है कि जब बच्चा एनईपी के थ्रू गो थ्रू होगा तो उसके पास जो स्कोप दिखेगा मुझे लगता है वो चूज करेगा और उसमें आगे बढ़ेगा।
0: न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी OECD पीसा डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मल्टी स्किल पर फोकस करती है। तो मल्टी स्किल होने के टाइम पर आज पूरी दुनिया भी इसी बात पर फोकस करे कि केवल इंटेलिजेंट ना हो इंसान, इमोशनल क्वोशेंट वाला हो। तो वो इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एक स्टूडेंट के अंदर, एक युवा के अंदर लाने के लिए योग, वही भारतीय ज्ञान, केवल योग ही नहीं, उसमें मैं कहूँगी आयुर्वेद भी, हमारा स्वास्थ्य भी, दिनचर्या भी, तो वो सारी की सारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, वो अपना अहम रोल कैसे अदा करती है?
1: भारतीय ज्ञान परंपरा एक नया विषय जरूर रखा है एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बट मुझे लगता है कि ये नया विषय नहीं है, ये एक वृक्ष है। और जितने भी आपके विषय आज के टाइम पे हैं वो उसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं। अगर भारतीय ज्ञान प्रणाली की बात में आप वेद से स्टार्ट करें, उपनिषद से स्टार्ट करें और पुराणों से स्टार्ट करें, देखिए मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलना चाहता हूँ कि जिस टाइम हमारे माँ बाप या हमारे पेरेंट्स मैक्सिमम भारत की एजुकेशन, मैं ये नहीं कहता कि ज़्यादा मतलब एजुकेटेड नहीं थी, एजुकेटेड थी और नहीं थी दोनों में हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे विषय रखे जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ का हिस्सा थे वो, और डेली रूटीन की एक्टिविटीज का हिस्सा थे। तो आप मान के चलिए कि जब हम रूटीन में कोई काम करते हैं तो वो हमारे संस्कारों में आ जाता है, और जब वो हमारे संस्कारों में आ जाता है तो आपकी एजुकेशन जो एनईपी का विषय रखा है हमने, उस एनईपी के विषय को अगर आप देखेंगे, आप मुझे बताइए कि एक बच्चा साइंस ले लेता है और साइंस में उसका एक लेवल पे आके माइंड काम नहीं करता, या वो स्ट्रेस में चला जाता है, वो अंडर प्रेशर फील करता है, तो उसके पास कोई स्कोप ही नहीं बचा था।
0: सही बात है।
1: अब आपके पास क्या है, आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, अब आपके पास क्या है, आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। एटलीस्ट आप एक देखिए कि एक बच्चा बीटेक कर रहा है या कोई भी डिग्री कर रहा है, उसके लास्ट ईयर में रीप ईयर आ जाती है, उसके पास कोई डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, उसका करियर खत्म। बट एनईपी ने तो बड़ी सुविधाएं दे दी ना, आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, आप डिप्लोमा ले सकते हैं, आप डिग्री ले सकते हैं, और उसके बाद आप देखिए कि आप रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनर्स के साथ कोई काम कर रहे हैं तो इट्स मीन्स आपने रिसर्च किया, स्पेशलाइज्ड हासिल की। तो एनईपी भारतीय ज्ञान प्रणाली की वो डिफरेंट शाखाओं का एक कॉम्बिनेशन है जिससे हर बच्चे के पास होना चाहिए, जिसको हर घर में होना चाहिए, हर आंगन में होना चाहिए। वो पेड़ सबको फल देता है, और मुझे लगता है जितना मैंने इसको पढ़ा है एनईपी को, मुझे यही महसूस होता है कि आने वाले टाइम में एनईपी एक मिसाल काम होगी और हर घर में ये पेड़ होगा और उसका फल हर घर को मिलेगा।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि 21वीं सदी हमारी भारत की है और इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल्य हैं वो अपना समावेशन ज़रूर समाज में दिखलाएंगे। सर,

0: आजीविका के प्रश्न से यदि देखा जाए, उस दृष्टिकोण से बात करें, तो पहले जब 18वीं सदी, 19वीं सदी या 20वीं सदी की बात करें, तो व्यापार केवल भारत से मसालों का होता था, और आज के दिन विचारों का हो रहा है कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो उसमें आज के युवा के सामने लोकल से ग्लोबल होने के क्या क्या अहम करियर ऑप्शंस हैं?
1: जो मैंने आपको कहा कि 21वीं सदी भारत की है, वो क्यों है, ये भी मैं आपको रखना चाहता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि भारत की सदी कि हम मसालों से हटके आइडियाज पे आए। हमने आइडियाज के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उबर का एग्जांपल ले लीजिए आप, ना कोई रिसोर्सेज, ना कोई, वो सिर्फ एक आइडिया ही था। आइडिया से कितना पैसा उसने वो जनरेट कर रही है कंपनी, आप देखिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, भारतीय ज्ञान प्रणाली की एक अच्छा विषय मैं आपके सामने रखता हूँ, वो विषय है ज्योतिष। कौन कहते हैं कि भाई ज्योतिष में स्कोप नहीं है? आपको पता है एस्ट्रोटोक ने 2024 का, मैं कहीं डेटा पढ़ रहा था, 121 करोड़ रुपया कमाया विदेशों से। तो इसका मतलब क्या है कि विदेशी भारतीय विषयों पे बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनको हर उस चीज़ में इंटरेस्ट है जो हमारे संस्कारों में है। अगर उसको थोड़ा सा भी हटके देखेंगे, योगा में देखिए आप, ऑनलाइन योगा क्लासेस कितनी है, कितना पैसा कमा रहे हैं भारतीय है। तीसरी बात कीजिए, ये तो आपको डेटा हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में मिल जाएगा। आयुष में अगर हम बात करें, आयुर्वेद और हर्बल की, आप बिलीव करें, मैंने थोड़ा सा रफ एस्टिमेट में आपको बताना चाहता हूँ, 689 करोड़ बिलियन US डॉलर का बिजनेस किया है। तो ये क्या है, जब हमारे पास बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन रिजर्व हमारा बढ़ेगा, तो हमारी जीडीपी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो ये किसने दिया? हमारे वेद अपने शास्त्रों ने तो दिया ना, वो शास्त्र पहले ही हमें बता के चलते हैं कि आप इस एनर्जी को ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं।
0: सही बात, और ये भी एक बिजनेस का ही पहलू है, इससे बिजनेस हो रहा है।
1: बिजनेस हो रहा है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी एक ऐसी ज्ञान परंपरा है जिसने जड़ों का काम किया है, और बहुत सारे ऐसे पौधे उगाए हैं या बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हमें दी हैं जिनको अगर हम रियली में जीना चाहें तो युवाओं के पास आपको जॉब सीकर की जरूरत ही नहीं है, आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे आइडियाज हैं, हवन सामग्री इकट्ठा करके ऑनलाइन भेज रहे हैं बाहर बच्चे, वो क्या है, वो भी हमारे संस्कारों ने दिया है, वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा ने दिया है। ज्योतिष, आप मुझे बताइए एक छोटी सी बात, आप वेद पुराणों की बात कीजिए, कहते हैं कि भाई ये तो विषय को डायरेक्शन से भटका देता है। मैं कैसे कहता हूँ भटकाता, देखिए ना आप, मैं सुदर्शन चक्र की मैं बात रखना चाहूँ आपके सामने, तो सुदर्शन चक्र जब कृष्ण भगवान छोड़ते थे तो जिसके लिए छोड़ते थे उसी के ऊपर जाता था
0: डायरेक्ट GPS।
1: आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे जब हमारे सोच में, हमारी कथाओं में वो चीज थी, तो आज के टाइम पे जो गाइड, आपकी मिसाइल, गाइडेड मिसाइल है, जो टारगेट होता उसी पे जाती है ना। दैट्स मीन्स सुदर्शन चक्कर भी टारगेट पे जाता था और आज की मिसाइलें भी टारगेट पे जाती। तो ये विषय बिल्कुल अलग है ही नहीं, इसको अलग करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम हमारी सोच में साइंस को रखते थे, हमारी सोच में ही मैथ को रखते थे, हमारी सोच में ही ज्योग्राफी को रखते थे। जितने विषय आप पढ़ रहे हो वो सब भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ब्रांचेज के रूप में काम करता है, और जड़ और वो पेड़ है तो भारतीय ज्ञान परंपरा है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही सर, मैकाले की शिक्षा नीति से हटकर आज के युवा को अपनी भारतीय शिक्षा की ओर आने की ज़रूरत है, अपनी जड़ों की ओर लौटने की ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये दौर है जब ह्यूमन इंटरवेंशन घटती जा रही है, और जो एक पारिश्रमिक होता है कि हाँ मेहनताना जिसको हम बोलते थे, जो शारीरिक रूप से हम कमाते थे, अब वो केवल और केवल दिमागी रूप से हो गया, स्पर्श से हो गया है। तो इस आज के इस बदलते दौर में, क्योंकि भारतीय ज्ञान प्रणाली परिश्रम मांगती है, तो इन दोनों के मध्य सामंजस्य एक युवा जब करियर चूज कर रहा है तो उस समय कैसे बना सकता है, क्योंकि उसे जब स्कूल से निकलकर वो यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो वो 4 से 5 साल उसके डिसाइडिंग है। उस टाइम पर उसको सबसे ज़्यादा जो लगता है कि मुझे इस चीज़ की कोचिंग लेनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये स्किल होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बीच में इंडियन नॉलेज सिस्टम को वो ज़िंदा कैसे रखे?
1: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जब अब आई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टाइम है, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इन्होंने बहुत ईजी कर दिया, सब कुछ ईजी कर दिया है, बट वो आई कैसे, कहाँ से आई, किसने क्रिएट किया?
0: किसी की सोच है।
1: सोच कहाँ से आई?
0: विचार से, मंथन।

0: से,
1: मंथन से आई ना, मंथन से ज्ञान कहाँ से आया?
0: परवरिश से,
1: रिसोर्सेज
0: जड़ों
1: से।
0: से, संसाधनों से।
1: जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी बगैर रिसोर्सेज के नहीं चल सकती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि परिश्रम नहीं होता? परिश्रम कोई शरीर का परिश्रम थोड़ी है, मेंटली परिश्रम भी तो होता है, मन से किया हुआ, सोच से किया हुआ। आप कोई लेटर लिखते हैं, अब देखिए ना, ये तो हमें बहुत पहले दे दिया जाए, छुट्टियां होती थी तो 31 सुफे लिखने के लिए दिए जाते थे, ठीक है, वो क्या थी?
0: वो प्रैक्टिस थी,
1: प्रैक्टिस थी,
0: मंत्रणा
1: मंत्रणा
0: थी।
1: थी। आप कुछ लिखोगे, उसमें कुछ बच्चे देख के लिखते थे, कुछ बच्चे सोच के लिखते थे। आप देखिए, कोई विषय आपको दे दिया जाता है कि आप इसमें निबंध लिखिए, वो क्या है? आपकी सोच,
0: मंत्रणा।
1: आपकी मेहनत, आपके दिमाग की मेहनत। मैं कहता हूं ना, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को दो कमांड, बगैर सोचे क्या देगी रिजल्ट आपको? बस
0: नहीं दे सकती।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आदमी से बढ़ के नहीं है, ह्यूमन ब्रेन से बढ़ के नहीं है, उसको उसके हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, उसको ह्यूमन माइंड से चलाया जा सकता है, ह्यूमन ब्रेन से चलाया जा सकता है। और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसको पॉजिटिव वे से आप जितना यूज करेंगे, इसने बहुत बड़ी हेल्प की है सभी ऑर्गेनाइजेशंस की, बच्चों की भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की भी, कि आप शॉर्ट टाइम में आपको जो मटेरियल चाहिए वो आपको अवेलेबल करा
0: हाँ,
1: देती। तो इसकी पॉजिटिविटी के बेनिफिट्स लीजिए। मुझे लगता है कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि ये मतलब लोगों की जॉब खाएगी, ये खाएगी,
0: ये
1: नहीं।
0: बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम पिछली पीढ़ी की बात करें तो उस समय विज्ञान वरदान और अभिशाप होता था, फिर कंप्यूटर वरदान और अभिशाप हुआ, अब
1: जी,
0: एआई वरदान और अभिशाप
1: सब
0: हो गया है। तो बेसिकली ये पीढ़ी दर पीढ़ी विकास है।
1: विकास है, और उस विकास को उतना ही लीजिए जितनी जरूरत है। अगर विकास
0: जी
1: को ज्यादा लोगे तो आप फिर संस्कार को भूल जाओगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली यही तो कहती है आपको कि आपको संस्कार के साथ चलना है, आपको ज्ञान के साथ चलना है, आपको टेक्नोलॉजी भी लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको क्या करेगी? सफल बना देगी।
0: आपसे बातचीत करके सर, जितना मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली आज के युवा को ये कहती है कि आप विचारशील ज़्यादा बने,
1: जी
0: ठहराव के साथ चीज़ों को
1: जी
0: सोचें, संयमित बने। फिर से बात वही आती है कि जब इंसान अपने सपनों के बारे में सोचता है, वो बड़ा सोचता है, वो छोटी चीज़ों में बड़ा अर्थ नहीं खोजता लेकिन सपना बड़ा देखता है। तो वो छोटी चीजों में बड़ा खोजने का दर्शन जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के पास है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
1: देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं या घर की रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, उसमें भी हम ब्रेक लेते हैं। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने शरीर को टाइम देते हैं, तो उसमें भी ब्रेक लेते हैं। आप कोई विषय पढ़ते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि मेरा माइंड, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, वो भी क्या है? ब्रेक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली सिर्फ इंसान को यही कहना चाह रही है कि आप मंथन कीजिए, आत्म मंथन कीजिए। अर्जुन महाभारत के युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में सब कुछ डाल देता है, अपने हथियार रख देता है, रथ पे बैठ जाता है, बड़ी उदास होकर बैठ जाता है। तब वो कृष्ण से कहता है कि भाई, मैं किसके लिए लड़ाई कर रहा हूँ? मैं उस राज्य के लिए लड़ाई कर रहा हूँ जिस जो मुझे मेरे अपनों की मौत के बाद मिलेंगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे अपनों की मौत की बात नहीं, यहाँ धर्म और अधर्म की बात है। तो आपके माइंड में कोई भी युवा है या कोई भी इंसान, उसके माइंड में दोनों बातें आती हैं, धर्म और अधर्म, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। उसको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका ये रिजल्ट आएगा, ये करूंगा तो ये रिजल्ट। जैसे साइबर थ्रेट ले लीजिए आप, कुछ लोग करते हैं ना, आउटपुट क्या है?
0: सही बात, विध्वंसक
1: नेगेटिविटी।
0: है बिल्कुल।
1: आपका रिजल्ट तो नेगेटिव ही मिलना है। थोड़े दिन आप कामयाब हो जाओगे, रिजल्ट तो फिर नेगेटिव मिलना है। आप देखिए, नशा देखिए, बच्चा नशे की तरफ मुंह कर रहा है, आउटपुट क्या है? पूरा परिवार खराब हो जाता है,
0: पीढ़ियां बर्बाद हो जाती
1: पूरा परिवार खत्म हो जाता
0: है
1: है।
0: सर। इस पे एक चीज़ और मैं आपके आपसे सुनना चाहूँगी, आपके मुखारविंद से, कि हम चाह रहे हैं कि बच्चे को आत्ममंथन करना चाहिए। तो आत्ममंथन के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता भारतीय ज्ञान प्रणाली कहती है, या ऋग्वेद का भी हम उदाहरण लें, तो वो मंत्रणा है, मंत्र पढ़ने, अपनी किताबों को पढ़ना, पठन पाठन से जुड़ना। तो क्योंकि आज का युवा भविष्य के लिए जब सोच रहा है तो वो कोचिंग सेंटर से मिले हुए या स्कूल से मिले हुए न्यूमेरिकल तो कर लेता है, लेकिन जब उसको ब्रह्मांड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है तो वो अपने आप को असहज महसूस करता है। तो उस स्तर के सपने यदि देखे हैं तो उस स्तर तक का पठन पाठन जो सामग्री है वो कहाँ मिल सकती है?
1: देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। आप ये विषय जो आपने रखा, इसका रिप्लाई भी आपने ही दे दिया, और बहुत सुंदर विषय है ये, और युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे पहले

0: जाते ही सारे लाइन में लग के प्रार्थना कहलाते थे, और प्रार्थना में बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी होती थी जो मेडिटेशन का काम करती थी। आज भी वो मेडिटेशन का
1: हाँ
0: काम
1: जी,
0: करती। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप स्ट्रेस में फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो आपको जो सबसे सुंदर गीत अच्छा लगता है वो गुनगुनाइए, गाइए आप साथ, और 5 मिनट आंख बंद करके उसको दोहराते रहिए, दोहराते रहिए। आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि 10 मिनट में आपका माइंड जो है स्टेबल हो जाएगा, और आप स्टेबल होकर एक अच्छे शुद्ध मन से सोच सकेंगे कोई भी विषय आपके दिमाग में होगा। देखिए, जैसे हम प्रार्थना करते थे, इतनी शक्ति देना मुझे दाता, ठीक है, सुबह सुबह लेके तेरा नाम प्रभु, तो ये क्या था?
1: ये भारतीय ज्ञान,
0: भारतीय ज्ञान, ये भारतीय ज्ञान परंपरा ही सिखा सकती है।
1: बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रारूप आपके इस वक्तव्य से निकल कर आया कि भारतीय ज्ञान परंपरा युवाओं के केवल आजीविका वाले भविष्य की बात नहीं करती, वो उसके समग्र जीवन की बात करती है, चाहे वो
0: मैंने आपको
1: पारिवारिक
0: बताया
1: हो,
0: ना,
1: सामाजिक हो, हर प्रकार से, क्योंकि जीवन केवल पैसे से नहीं चलता, जीवन सुकून से चलता
0: मैंने
1: है।
0: आपको बताया कि ब्रिज का काम करती है,
1: हाँ जी,
0: जोड़ती है वो, आप टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ती है, वो नॉलेज के साथ भी जोड़ती है, वो ब्रिज का काम करेगी कि टेक्नोलॉजी और नॉलेज आपके पास है, बट उसमें संस्कार अगर आप डाल दोगे, जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं, और यज्ञ की आहुति डालने के बाद जब इन्वायरमेंट हमारा बहुत पॉल्यूशन फ्री हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि ये ब्रिज का काम करती है, और यही ब्रिज भारतीय ज्ञान प्रणाली है।
1: आपका विषय प्रबंधन है, तो उसी के अनुरूप मैं इस कार्यक्रम का समापन आपसे चाहूंगी कि आप युवाओं को संदेश दें कि अपने जीवन का प्रबंधन, अपने भविष्य का प्रबंधन भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुरूप कैसे करें और भारत के एक आदर्श नागरिक कैसे बने।
0: मेरे विषय की बात मैं करना चाहता हूँ, युवाओं की मैं बात करना चाहता हूँ, तो युवाओं को हमेशा मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज द थिंग प्रॉपरली। सिंपल सी सिंपल डेफिनेशन है, हर एमबीए के बच्चे को पता होता है, बट हमें ये मैनेजमेंट शुरू से ही सीखने को मिली थी, माँ बाप से ही सीखने को मिली थी कि चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाता है। गाँव में जब छोटी सी कोई भी चीज़ होती थी, तो आपको ध्यान हो पीछे गाँव की इकोनॉमिक सिस्टम गाँव से ही चलता था, पैसा शायद बहुत कम होता था, कभी गेहूं से कुछ ले आए, कभी बाजरा से कुछ ले आए, वो इकोनॉमिक सिस्टम था, मतलब मैनेज द थिंग्स पर लेता। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में बहुत बड़े बनिए, आप हर चीज को मैनेज करके चलिए, परमात्मा आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाए, आप आसमान तक पहुंचे, बट इतना ऊंचा कभी मत बनना कि आप अपने संस्कार भूल जाओ, अपने माँ बाप को भूल जाओ। ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि ब्रिज जब तक नहीं होगा, प्रोसेस का मतलब आप मानिए, मैनेजमेंट में हम प्रोसेस ही ज़्यादा पढ़ते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक वे से अपने टारगेट तक पहुँचना, उसके बीच की कोई भी कड़ी अगर आप छोड़ दोगे युवा, तो डेफिनेटली आप एक टाइम के बाद अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत कामयाब बने, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे करियर काउंसलिंग, विषय था भारतीय ज्ञान प्रणाली का युवाओं के करियर में योगदान। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुनील सिंह, रजिस्ट्रार चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा से, और उनसे बातचीत की थी डॉक्टर भूमिका शर्मा ने। लीजिए साथियों, सुनिए ये गीत फिल्म बरेली की बर्फी से, आवाज़ है आयुष्मान खुराना की, और गीतकार और संगीतकार हैं आरको प्रावो मुखर्जी।
2: आएगा।

0: अभी आपने सुना साथियों बरेली की बर्फी से गीत, आवाज़ थे आयुष्मान खुराना की और गीतकार और संगीतकार थे आरको प्रावो मुखर्जी।
1: अब दीजिएगा इजाज़त अपने रेडियो साथी हर्ष और महिमा को।
0: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर

0: भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, 5 करोड़ 24 लाख महिलाएं और 17 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7 बजे कार्यक्रम ग्रामीण संसार में सुनिएगा बाल श्रोताओं का कार्यक्रम बालक मंडली, भेंट वार्ता एक किसान से। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत के तहत। रात 8:25 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे पंकज कुमार की गाई गजलें। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10 बजे। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। इसमें आज आपको सुनवाएंगे दोराहा फिल्म से चुनिंदा गीत और फिल्म संगीत का लुत्फ लीजिएगा शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:45 पर। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। समाचार दर्शन सुनिएगा शाम 6:30 पर, जिसे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 7:15 पर श्री सुखबीर सिंह से हिंदी वार्ता सुनिएगा। विषय रहेगा विशाल जनसंख्या का उद्यमशीलता में योगदान। समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:25 पर। शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा संसार आप सुन सकते हैं। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम खेत खलिहान में चर्चा का विषय होगा भेड़ बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय, बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव। ये विषय होगा डॉक्टर रश्मि त्यागी की पूर्व प्रसारित बातचीत का कार्यक्रम ग्रामीण संसार में शाम 7 बजे। शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत में डॉक्टर मंगत राम की पूर्व प्रसारित बातचीत का विषय रहेगा धान की रोपाई में सावधानियाँ। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12:30 पर। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। रात 8:25 पर सुनिएगा सुगम संगीत कार्यक्रम। फरमाइशी फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक आप सुनेंगे प्रातः 9 बजे। फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनिएगा रात 10 बजे। चित्रपट संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 1:10 पर। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9 बजे।

1143 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के अम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई। और मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जुलाई तक हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित प्राकृतिक खेती संवाद को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिति का मुख्य कार्य किसानों से संपर्क करना, उनके खेत पर जाना और सरकार से तालमेल करा के प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना होगा। समिति के सदस्य एक तरह से प्राकृतिक खेती के प्रेरक अम्बेसडर होंगे।
1: आज हम प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान योजना को शुरू कर रहे हैं। श्री अन्न को हम भगवान का रूप मानते हैं। इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी लिए। हमने प्रेरक अम्बेसडर बनाने हैं, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप सब से केवल प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह नहीं कर रहा, किसान भाइयों एक जन आंदोलन का हिस्सा बनाने के लिए आह्वान कर रहा हूँ।
0: मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के ब्रांड अम्बेसडर बनने का आह्वान करते हुए कहा कि अब केवल चिंतन नहीं बल्कि अमल करने और दूसरों को प्रेरित करने का समय है। उन्होंने किसानों से मिले सुझावों को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने का आश्वासन भी दिया।
1: आप लोगों की तरफ से भी इसमें महत्वपूर्ण बातें प्राकृतिक खेती को लेकर के रखी गई हैं। आपके सुझाव भी आए हैं साथियों। ये प्राकृतिक खेती की तकनीकों ये सीखने का अवसर नहीं है, उसको जानने का अवसर नहीं है, बल्कि ये किसान और प्रकृति के उस अटूट रिश्ते को फिर से मजबूत करने का अभियान है। जो रिश्ता टूट गया था, प्रकृति को हम ठीक से यूज करेंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं आपदा बन करके आ जाएगी, हमें घेर लेगी।
0: मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को प्राकृतिक खेती करने वाले उन किसानों को सब्सिडी जारी करने के निर्देश दिए जिन्होंने गाय खरीदने हेतु सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती माता की सेवा, खेती की लागत कम करने, जल और मिट्टी के संरक्षण तथा आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसानों से सीधा संवाद करेगी और प्राकृतिक खेती के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पर प्रत्येक माह इसी प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की उपज की बिक्री में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज पंचकुला में किसानों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा तथा हैफेड इसकी खरीद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए राज्य में 4 उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं और गन्नौर मंडी में अलग शेड भी बनाया गया है।
1: आज गन्नौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी तैयार हो रही है। एक पूरा शेड तो किसान के लिए रिजर्व किया है कि किसान अपनी फसल लेकर के आए, एसी वो उसको पीछे रूम मिलेगा और वो अपनी फसल को बेचे, अगर बच गई तो पीछे एसी में रख दे कमरे में, अगले दिन आएगा बेच ले, खराब भी नहीं होगी। उसको तो हमने कम्प्लीट भी कर दिया जो किसानों को शेड देना, परंतु जब वो मंडी स्टार्ट होगी तो तभी हम उसको अलाउ करेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्राकृतिक खेती सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगी।

0: इसके लिए सरकार और किसानों को मिलकर जन आंदोलन के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों को कर्ज मुक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का प्रभावी माध्यम है। आज पंचकुला में प्राकृतिक खेती संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती में किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि रसायन बनाने वाली कंपनियों के पास चला जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक खेती में बाहरी संसाधनों पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बनता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आईकिया इंडिया के सीईओ पैट्रिक एंटोनी के नेतृत्व में आए स्वीडन के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस बैठक में हरियाणा और आईकिया के बीच सहयोग को मजबूत करने और राज्य में भविष्य के निवेश के अवसरों पर चर्चा की गई। स्वीडन की होम फर्निशिंग कंपनी आईकिया के लिए भारत सबसे महत्वपूर्ण बाजार है। बैठक के दौरान पैट्रिक एंटोनी ने हरियाणा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में आईकिया की गहरी दिलचस्पी और नई परियोजनाओं में निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की प्रगतिशील नीतियों, उद्योग अनुकूल इकोसिस्टम और सक्रिय प्रशासन ने वैश्विक कंपनियों के लिए निवेश करने और आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सहज और निवेशक अनुकूल व्यापार का माहौल प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। गौरतलब है कि यह कंपनी पहले से ही गुरुग्राम में अपनी बड़ी परियोजना के जरिए हरियाणा में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इस परियोजना से लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। लगभग 10 एकड़ में फैली यह परियोजना भारत में आईकिया के प्रमुख निवेशों में से एक होगा, जो एक ही जगह पर रिटेल, ऑफिस स्पेस और सामुदायिक केंद्रित अनुभवों को एक साथ लाएगी। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 से 9 जुलाई तक कई जगहों पर, 10 से 12 जुलाई तक कुछ जगहों पर और 13 जुलाई को इक्का दुक्का जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 7 से 9 जुलाई और 11 से 12 जुलाई के बीच इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में आज और कल तक ऑरेंज अलर्ट और 10 से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि पंजाब के लिए आज से 12 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत फंड किए जाने वाली संरचना परियोजनाओं में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 और सार्वभौमिक सुलभता के मानकों का पालन अनिवार्य करने का फैसला किया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा ने आज चंडीगढ़ में कहा कि इससे निर्माण के बाद महंगे बदलाव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शुरुआत से ही सार्वभौमिक डिजाइन के सिद्धांतों को अपनाने से ऐसी संरचना बनाने में मदद मिलेगी जो समावेशी, टिकाऊ और हर नागरिक के लिए सुलभ हो। उन्होंने आगे कहा कि सार्वभौमिक सुलभता सिर्फ दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अस्थायी रूप से चलने फिरने में दिक्कत महसूस करने वाले लोगों को भी फायदा होता है। कुरुक्षेत्र जिले में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार ने बताया कि 15 जून से 7 जुलाई तक जिले में 98% फार्म का वितरण हो चुका है।
1: हमारा SIR यहाँ पे 15 जून से स्टार्ट हुआ था और 15 जून से आज 7 जुलाई तक हमारा 98% फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और जिसमें से 69.15 वापिस आ चुके हैं और BLO द्वारा डिजिटाइज किया गया है। अगर हम विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो 11 लाडवा में हमारा जो इन्वर्शन फॉर्म डिजिटाइज 76.27 हो गए हैं, 12 साबाद में 81.90, 13 थानेसर में 53.93, पेवा में 68.06 हो चुका है। हमारे BLOs घर घर विजिट कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि अगर कोई अपना फार्म नहीं भर पा रहा तो BLO द्वारा उनकी मदद की जा रही है। इसके अलावा चारों विधानसभा क्षेत्र के SDM कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर कोई मतदाता अपने विवरण की जांच करवा सकता है। चुनाव कार्यालय में भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान समिति बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती के एम्बेसडर बनने का आह्वान किया। हरियाणा में प्राकृतिक खेती से तैयार उपज के लिए मंडियों में अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। स्वीडन की कंपनी आइकिया ने हरियाणा में नई परियोजनाओं में निवेश करने की इच्छा जताई। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत

0: भिंडी की है, बताऊ की है, बहुत सी तरह की जो फसलें हैं भाई, अपने पालक वाली फसलें हैं या मूली वाली फसलें हैं, किसी भी तरीके की जो अपनी जो साग सब्जी वाली फसलें हैं, सब्जी फसलें, उन काम में जिन जिन का जो समय है, और साथ साथ में देखो फूल वाली खेतियाँ का भी चल रहा है, तो इस मौसम में जो जो सब्जी फसलें लगाई जाएंगी या अपनी जो दलहनी फसलें खाने पीने वाली, और भाई जो दूसरी अपनी जो पेड़ पौधे वाले जो बागवानी का जो समय है, वो सारा का सारा यूँ जो मौसम है इनके ऊपर दारमदार हो जाए। बहुत सी फसलें बाट देखें जहाँ के भाई मानसून की बारिश आवे, पहली बरसात शुरू हो जाए और हमारा काम चल रहा है, तो उसकी तो शुरुआत होगी है। बाकी जो बरानी इलाके हैं उनमें तिल की है, ये इस तरह की काश्त हम कर सके हैं जिनमें कम पानी की ज़रूरत पड़े, और जित पानी के साथ ना उड़े धान की फसल का लोभ ना किया जाए तो बहुत बढ़िया रहे, क्योंकि धान की फसल एक पानी वाली फसल का ही जा है, और उसमें फिर दिक्कत आवे है अगर हम ज़्यादा लोभ करके ना धान लगा दें, फिर पानी दे मार के चलें जा, तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम बने है। इसलिए यही कहा जाए कि वे पानीपात के भरपूर मात्रा में साधन हो तो धान लगावें, नहीं तो जो दूसरी फसलें हैं उनकी ओर रुचि बनावें। और भाई आज बुधवार का दिन है, तो आज के दिन हम किसी न किसी किसान थे आपकी मुलाकात करा आ रहे हैं, उनके विचार साझा करवा आ रहे हैं, हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है, क्योंकि पहले एक किसान महिला आई थी, तो सारी अणकामाण के ही हैं कि कुर खेती कर रहे हैं, किस तरह से हम कीटा ही पहचान कर रहे हैं, तो क्यों ना भाइयों को भेंट वार्ता एक किसान से वो सुनवा दी जाए, तो सुनिए बातचीत।
1: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया, इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
2: भाइयों, खेती में महिलाओं की जो भागीदारी है वो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, और चाहे घर हो चाहे परिवार हो, खेत क्यार हो, उनकी जो एक उपस्थिति है वही उस काम को पूरा कर देती है। यानी कि बहुत जिम्मेदारी से काम करती है, बड़ी बारीकी से काम करती है और पूरी समझ के साथ काम करती है, और जब तक किसी काम को अच्छे से समझ नहीं ले उसमें हाथ नहीं डालती, चाहे हम पशुधन की बात करें, खेत क्यार की बात करें। तो आज का अपना ये कार्यक्रम जो है, जिसमें भेंटवार्ता है किसान से, एक ऐसी महिला किसान को हमने आमंत्रित किया है भाइयों के लिए, जो कि बहुत समर्पित अपने आप के अंदर एक किसान है, पशुपालक भी कह लो उनको, और जहर मुक्त खेती अभियान से बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। तो हम बहुत स्वागत करते हैं मनीषा जी का, जो कि आई हुई है गांव ललित खेड़ा जींद से।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मनीषा जी। ठीक हो?
3: ठीक हैं जी, आप
2: तो
3: बताओ।
2: बस बिल्कुल आप बुझ जाएंगे, हम बताएंगे नहीं,
3: बिल्कुल।
2: ठीक है? तो पहले तो आपके परिवार के बारे में बताएं, मतलब किसान परिवार जो आपका है ये।
3: मैं एक किसान परिवार से हूँ और मैं 20 जून 2012 से जहर मुक्त खेती करती हूँ
2: अच्छा
3: जी। और हमारे गांव में एक किसान खेत पाठशाला लगती है जो महिलाओं की लगती है,
2: अच्छा सिर्फ महिलाओं की।
3: सिर्फ महिलाओं की लगती है। उसमें सभी गांव की महिलाओं की ज़्यादातर भागीदारी है, क्योंकि महिलाएं एकजुट होकर बहुत बारीकी से काम करती हैं।
2: तो मनीषा जी देखो, जब हम आपकी इस किसान खेत पाठशाला के साथ जब परिचय हुआ था हमारा,
3: जी
2: उस वक्त पुरुष थे ज़्यादातर,
3: हाँ जी,
2: बहुत कम थी महिलाएं।
3: हाँ जी,
2: और आज इतना लंबा एक अभियान ये हो गया, इसके अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी हो गई है।
3: ये 2010 में एक ऐसा कीड़ा आया था जो किसान ने 35-35 स्प्रे किए थे,
2: 35-35
3: तो भी वो कीड़ा काबू नहीं आया था।
2: हाँ
3: तो ये बोला गया कि स्प्रे से नहीं मरेगा। उस कीड़े को देखने के लिए सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खेत में जाके प्रैक्टिकल करके ये क्या खाता है, क्या पीता है, और कैसे अंडे देता है, क्या इसके अंडे खाते हैं, क्या इसके बच्चे खाते हैं, ये सब हमने प्रैक्टिकल करके देखा। तो देखा कि कुछ कीट ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ कीट ऐसे हैं जो पत्ते खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फूल खाते हैं, मतलब वो पौधे पर निर्भर हैं। कुछ कीट ऐसे हैं जो पौधा उनको अपनी साइड आकर्षित करता
2: खुद
3: है
2: पौधा करता है।
3: जी, या तो कोई सुगंध छोड़ता है
2: हाँ
3: या कोई पत्ते से ऐसी कचियापन छोड़ता है जिससे कीट आएगा, और पौधे को भी जरूरत है। एक टिड्डा नामक कीट होता है,
2: टिड्डा,
3: उसकी कपास की फसल में बहुत जरूरत होती है, टिड्डे
2: अच्छा
3: की कपास की फसल में।
2: जरूरत है।
3: हाँ जी, तो वो ऐसा करेगा, मतलब पत्ते को बिल्कुल बीच से काट देगा,
2: छान देगा एक तरह से।
3: छान देगा,

0: वो जो धूप है वो पौधे को नीचे की लिए चाहिए होती है,
1: जी
0: तो ऊपर से पत्ता काटेगा, फिर दो चार पत्ते छोड़ के नीचे से काटेगा। जो सूरज की किरण है वो उस पत्ते पे गिरेंगी, फिर जो नीचे टिंडे हैं उन पे जाएंगी, तो उससे मतलब उस कीट से पौधे को बहुत फायदा होता है।
1: मतलब वो एक तरह से पौधा उसको खुद आमंत्रित करता भी
0: हाँ
1: आओ या कुछ खा ले यार मेरे लिए भी धूप का इंतजाम
0: हाँ जी,
1: कर।
0: और कोई भी मतलब कीट ने पौधा इतना ही खाण देगा जितनी उस कीट ने
1: जरूरत है।
0: जरूरत है, या तो कोई फिर इसी सुगंध छोड़ देगा जिस तक, या तो उस कीट के उल्टी हो जाएंगी या दस्त हो जाएंगे, इतना ही खाण देगा जितनी उस पौधे ने जरूरत है,
1: यानी जो फालतू खाए पिए वो भी कटवा ले
0: वो भी
1: उसके।
0: कड़वा लेगा। बिल्कुल
1: तो ये जो आपने एक खोजबीन करी है ये कैसे एक दिन में तो संभव नहीं है यार।
0: ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल एडीओ हुआ करते थे
1: जी हाँ
0: जींद में, तो उन्होंने देखा कि पुरुषों से तो मान नहीं रहे, पुरुषों के साथ तो झगड़ा होता है, तो
1: अच्छा
0: उन्होंने सोचा क्यों नहीं महिलाओं की भागीदारी की जाए इस काम में, तो उन्होंने गांव से एक एक एक एक करके महिलाओं को इकट्ठा किया, तब ये मुहिम चल रही है 2012 से।
1: 2012 से।
0: जी
1: तो आज कितनी महिलाएं हैं ग्रुप में?
0: तीन गांव से 200 महिलाएं हैं,
1: तीन गांव कौन कौन से?
0: ललित खेड़ा, निडाणा और रदाणा,
1: अच्छा इनसे 200
0: दो
1: महिलाएं।
0: सौ महिलाएं हैं और साथ में पुरुषों की भागीदारी है, पुरुष ज्यादा हैं,
1: अच्छा
0: पुरुष जो महिलाएं हैं उनके इस बैंड भी हैं, और आए दाएं से जो कुछ पुरुष ज्यादा रुचि है जिनकी वो पुरुष भी हैं।
1: चलो ये तो कीड़ों की बात होगी, लेकिन एक और विषय बहुत बड़ा आपके साथ जुड़ा हुआ ग्रुप के साथ है, वो है जहर मुक्त खेती का,
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: है ना? तो इसका ये दिमाग में कैसे क्या आया?
0: जहर मुक्त, जैसे हम किसी भी चीज के लिए अपने आप को स्वस्थ नहीं मानते,
1: जी
0: इतना पेस्टिसाइड डाल दें हैं, केमिकल डाल दें हैं जिससे हमारा पानी हवा सब कुछ
1: जहरीला
0: विष से
1: होगा
0: भरा हुआ है, इसलिए हमने
1: बिल्कुल।
0: सोचा कि जहर मुक्त थाली करें, सब कुछ जहर मुक्त होना चाहिए, हमने गीत भी बनाए हैं।
1: हाँ वो भी सुनेंगे, आप तो बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं आपके पास, और ग्रुप में जब जाते थे हम रिकॉर्डिंग करने के लिए तो महिलाएं बैठ के सुनाती थी
0: जी
1: कीड़ों के ऊपर और बीटल के ऊपर, एक दो गीत आपने बना रखे
0: हाँ
1: थे
0: जी
1: बहुत अच्छे से। लेकिन जो जहर मुक्त खेती की बात जब आती है तो इसके लिए भी कहीं कुछ करे हैं मनीषा जी आपने
0: हाँ जी,
1: कुछ?
0: एक हमने गीत बनाया था
1: चलो मौका पड़े
0: जैसे
1: हैं।
0: कि वो है जमींदार के ऊपर,
1: अच्छा
0: जमींदार ने इतने स्प्रे मार दिए, तो उस पे लिखा हमने
1: हाँ
0: खेती

0: ये हमने गीत बनाए थे। हाँ
1: अच्छा, तो ये सारे
0: जी
1: ग्रुप में चलते हैं गीत
0: हाँ
1: आपके,
0: जी
1: तो ये भी एक जागृति का बहुत बड़ा जरिया है लोगों को जागरूक करने का।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, उसके बाद आपने क्या कुछ किया? दम कपास की एक आपने शुरू में फसल पकड़ी थी, कपास के ऊपर आपने बहुत सारे प्रयोग करे अपने ग्रुप ने, आपके ने।
0: एक एनपीके का वो करते हैं हम, घोल होता है 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP और 0.5 किलो जिंक।
1: जिंक, अच्छा।
0: ये 100 लीटर पानी में 1 एकड़ में डाल सकते हैं। जैसे हम 50 किलो का एक बैग डालते हैं यूरिया का,
1: जी हाँ,
0: तो उस वो जहर मुक्ति करता है। ये जो 5 के 4.5 किलो का घोल है, ये डाल लें, 50 किलो का बैग हमारा वेस्ट जाता है। जो डालना है फोलियर करके डालो, 50 किलो की बजाय 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP और 0.5 किलो जिंक डालो। 50 किलो सीधा जमीन में जाएगा, जो जमीन में बिल्कुल बंजर करता रहा है।
1: यानी कि
0: इतना मत
1: पूरा पूरा
0: डालो,
1: फायदा नहीं मिलता उसका फसल को,
0: हाँ पूरा
1: लेकिन
0: फायदा नहीं मिलता। और
1: हाँ।
0: जो ये NPK का है, 100 लीटर पानी का घोल है, ये 50 किलो के बैग जितना काम करता है।
1: देखो, एक NPK तो अलग चीज़ होगी, वो तो बड़ा बनाया भी मिलता
0: हाँ
1: है
0: जी
1: बाजार में, एक कुछ एक अलग से घोड़ा आप लोग भी तो
0: हाँ
1: बनाते हो
0: जी
1: जो
0: वो
1: बताया
0: दलाल
1: था।
0: घोल बोलते हैं उसको।
1: वो उसका रेशियो
0: हाँ
1: वगैरह,
0: जी
1: हाँ कैसे है उसमें, उसको
0: वो
1: उसको भी तो आप पहले DAP को घोड़ बना दें, घोड़
0: अलग
1: करके।
0: अलग घोलते हैं दोनों
1: अच्छा,
0: को,
1: ठीक
0: फिर
1: है।
0: उनको पानी में 100 लीटर पानी में मिला के खेत में जाके उनका फोलियर से स्प्रे कर देते
1: स्प्रे
0: हैं।
1: कर देते
0: हाँ
1: ऊपर से,
0: जी
1: ऊपर का स्प्रे कर देते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी
1: तो ऊपर ये जो खुराक आप देते हैं, इसका क्या समझ है आपकी, क्या कहते हो?
0: जैसे किसान एक बैग 50 किलो का यूरिया का डाल रहा है,
1: आजकल तो 45 किलो का हो गया।
0: 45 किलो का आ रहा है, मतलब कि
1: हाँ
0: एक कट्टा डाल रहे हैं,
1: हाँ
0: तो वो बस 2 किलो 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो DAP और 0.5 किलो जिंक ही उस एक बैग की खुराक पूरी कर दे
1: पूरी
0: है।
1: कर देता है।
0: हाँ हमारा मानना ये है, तो हम बस यही करते हैं, बैग नहीं डालते पूरा।
1: कहीं कोई पैदावार में फर्क पड़े,
0: ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: कोई मित्र कीट और शत्रु कीटों का भी तो एक समझ
0: कीट
1: है।
0: किसी के शत्रु नहीं है, किसी के मित्र नहीं है, बोला था ना मैंने पहले।
1: अच्छा, वो शाकाहारी मांसाहारी था वो,
0: हाँ जी
1: है
0: हाँ जी
1: वो था। चलो,
0: 43 किस्म के शाकाहारी हैं और 162 किस्म के मांसाहारी हैं,
1: अच्छा,
0: तो सोच के देखो तुलना भी नहीं
1: बहुत
0: है।
1: बिल्कुल
0: अगर
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: शाकाहारी कीट हमारे पौधे पे कोई किसी भी तरह आने के कगार पे पहुंचेगा, तो मांसाहारी इतने हैं, उनको खुद कन्वर्ट कर लेंगे।
1: खुद उन्हें कंट्रोल कर लिए हैं
0: जी
1: उसमें से।
0: बिल्कुल
1: अच्छा, तो अब ये आपकी जो एक मुहिम है, ये जो आपने एक जागरण चलाया था, ये कैसे कैसे पहुंचे और आज क्या इसकी स्थिति है?
0: बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे को प्रेस वाले, मीडिया वाले सब हमारा साथ दे रहे हैं, और ज़्यादातर रेडियो वाले भी हमारा खूब तन मन से साथ
1: देखिए,
0: दे रहे हैं।
1: शुरुआत तो रेडियो से ही हुई
0: हाँ
1: थी,
0: जी बिल्कुल,
1: है
0: मैं एक
1: ना?
0: बार नेशनल पे भी गई हुई हूँ,
1: अच्छा
0: दिल्ली।
1: अच्छा बहुत अच्छी बात
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: और दूरदर्शन की बात करते हैं तो उन्होंने आपको कवर किया,
0: हाँ जी
1: लेकिन
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत जो है हम ये मान के कह
0: और
1: दावे से
0: ईटीवी भी
1: कि
0: हमें
1: हाँ
0: करता है।
1: चलिए, मतलब सभी चैनल उसके
0: हाँ
1: बाद,
0: जी
1: लेकिन आकाशवाणी रोहतक से जो शुरुआत हुई थी कि हमने जाकर के
0: सबसे पहले
1: वहाँ
0: आकाशवाणी से हुई थी जी।
1: आकाशवाणी को
0: हाँ
1: पकड़ा कि
0: जी
1: भी इतना अच्छा काम हो रहा है तो इसको एक पहचान
0: अभी
1: मिलनी ही
0: चल भी
1: चाहिए।
0: रहा है आकाशवाणी की, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, अभी भी चल रहा है,
1: हमने इसलिए नहीं कहा कि आप शुक्रिया अदा करो, लेकिन ये इस मुहिम के
0: चल रहा
1: साथ
0: है ना
1: जुड़ा
0: तो
1: हुआ है।
0: बताना पड़ेगा। ये मुहिम से फर्स्ट से जुड़ा था और अब तक हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रहा है।
1: लेकिन हम भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि देखो, वो महिला जो घर के अंदर चूल्हे चौके में रहती है, ठीक है, पशुपालन का काम करती है, मैसा का और उसो का, वो घर से निकलकर खेत में जाकर एक वैज्ञानिक की तरह काम कर रही
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, मैं ऐसे भी महिलाओं को यही संदेश दूंगी, जो घर में काम कर रही हैं वो खेत में भी जाके करें। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि अपने गमलों में भी बेल वगैरह लगा के हम अपने घर से ही अपने घर की खेती करके जहर मुक्त थाली कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी हम जहर से बचा सकते हैं।
1: बचा सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन हम तो आपको खेत में रखेंगे, वो बात करेंगे कि भाई बहुत कुछ पूछना है आपसे,
0: जी
1: तो खेत के अंदर आप किस तरह से कैसे प्रबंध करते हो, किस तरह से महिलाओं को जोड़ते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि सब कुछ आसानी से होता, कहीं ना कहीं विरोध भी होता होगा।
0: हाँ जी बिल्कुल, गांव में ऐसे बोलते हैं, बनेंगी डॉक्टरनी।
1: या बना के कर लेंगे ये करके,
0: हाँ
1: और स्प्रे का किसी को मना करो, आजकल तो वो बड़ा बुरा मान गया है कि भी इसके बिना तो
0: हाँ
1: फसल
0: जी
1: होगी नहीं।
0: अब है ना, बहुत लोगों के कैंसर, अटैक, मुर्गी के दौरे,
1: जी जी
0: लकवा,
1: जी
0: ये सब केमिकल स्प्रे कीटनाशक की वजह से है। बहुत लोग समर रहे हैं, मान गए हैं इस बात ने कि पंजाब पूरा कवर कर लिया कैंसर ने।
1: पंजाब तो
0: हाँ
1: मतलब
0: जी
1: बहुत ज़्यादा
0: एक
1: एक इसका
0: ट्रेन चला है जो कैंसर ट्रेन के नाम से चला है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह
0: तो
1: रहे हो
0: थोड़ा
1: आप।
0: सा अब पंजाब में भी मानसा साइड में बहुत मानने लग गए कि हमने ये जहर छोड़ देना चाहिए।
1: छोड़ देना चाहिए
0: जी, बिल्कुल।
1: क्योंकि देखो जो वैज्ञानिक बताते हैं उसके अलावा कई गुना इसका हम इस्तेमाल करते हैं, किसान जो है वो अपनी समझ के साथ करता है, लेना इतने से उसमें क्या होगा।
0: एक बार एनसीआर की टीम ने भी हमारे साथ प्लांट लगाए थे, उसमें नीम लेपन किया था और एक दलाल घोल किया था,
1: अच्छा
0: तो सेम था दोनों का।
1: अच्छा
0: उनने प्लांट बनाए थे आधा आधा एकड़ के, तो एक में तो नीम के स्प्रे करवाए थे,
1: ठीक है,
0: एक प्लांट में केमिकल का स्प्रे था जैसे जहर का स्प्रे
1: हाँ,
0: था,
1: जो भी करते वो,
0: हाँ,
1: हाँ।
0: और एक में हमारा दलाल गोल था।
1: अच्छा
0: जो केमिकल वाला था उस पे तो इतनी सफेद मक्खी का प्रकोप था, और हमारी में एक बार हुआ था वो भी ईख से सीधा आ रही थी,
1: अच्छा ईख से गन्ने
0: ईख
1: से
0: से
1: आई
0: आ
1: है,
0: रही थी सीधा, दो पैर में जब हमने देखा वहाँ पे फील्ड में जाके तो ईख से आ रही थी सीधा, और अगले सप्ताह हमने जाके देखा तो वो खुद कंट्रोल होगी। कुछ
1: खुद
0: बुगड़े
1: मतलब
0: ऐसे आए जिन्होंने उनके बच्चों में अंडे दे दिए, अंडों में अंडे दे दिए, बच्चों में अपने बच्चे पड़वा लिए उनके पेट में, तो
1: अच्छा
0: इनो ईरो इलो हैं, कुछ कीट हैं ऐसे जिनके नाम हैं जिससे हमें पता चल जाए कि इसके ऊपर का पाउडर उड़ गया, इसमें कौन कीट बैठा है, इसके अंदर किसके अंडे पड़ रहे हैं। ऐसे ही कीट एक दूसरे मतलब अपनी जीवन यापन करने खातर ज़्यादा अंडे देने लग जाएंगे। जैसे हमने स्प्रे कर दिया,
1: ठीक है,
0: अंडा है, अंडे पर सप्रा कोई काम नहीं करेगा क्योंकि उसके

0: कवच वो है,
1: बिल्कुल झिल्ली है उसके ऊपर
0: झिल्ली है
1: एक।
0: उसके ऊपर, और जो फ्लाई वाले हैं वो उड़ जाएंगे, जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो मरेंगे, जो बच्चे हैं चल चल सके हैं फ्लाई नहीं कर सकते,
1: जी
0: तो अंडे इतने रह गए जो नहीं मरेंगे अपने आप, और भी ज्यादा हो जाएंगे चालू। बस ये है कि समझण की जरूरत है, ना कि विष फैलाने की।
1: लेकिन ये समझ भी तो एकदम से नहीं आती ना मनीषा जी, उसके लिए भी सत्संग चाहिए या उन किसान भाइयों का साथ चाहिए जो उनको दिखाएं, उनको बताएं। और हमने तो देखा है कि आपके ग्रुप में बुजुर्ग महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं,
0: जी
1: बच्चे भी हैं,
0: बिल्कुल, बच्चे भी हैं
1: है
0: स्कूल
1: ना।
0: के, डेफोडिल स्कूल के बच्चे भी आया करते थे, हम भी उनके पास जाके सिखाया करते थे।
1: अच्छा,
0: जी
1: वहाँ जाके कैसे सिखाते हो उस
0: उन
1: आपके
0: स्कूल
1: क्लासरूम?
0: के जो टीचर्स थे ना, उनकी रुचि होगी थी, स्कूल की बाउंड्री के अंदर एक कपास का खेत था, तो वो देखा करते थे कि क्या करने आते हैं ये यहाँ पे। तो एक बार उनने हमसे सूझबूझ की, उन्हें भी थोड़ा सा दिलचस्पी होगी, थोड़े दिन बोले कि एक सब्जेक्ट लगवाएंगे इनको,
1: अच्छा,
0: फिर कुछ उनका रहा होगा। 1 साल तो उन्होंने हमारे साथ किया, प्रैक्टिकल करके देखा, बच्चों का भी एक लग्या करती, 6 पीरियड लग्या करता उनका, तो उसमें भी बच्चे हमारे साथ आके देखा करते थे।
1: देखा करते थे।
0: जी
1: तो आज आप अपने आप को किस मुकाम पे मानते हैं कि भी किसान खेत पाठशाला की तरफ से जैव मुक्त खेती के कारण
0: हाँ
1: आपको
0: जी
1: एक पहचान भी मिली है,
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: तो कैसा लगता है? मतलब
0: बहुत
1: एक
0: अच्छा लगता है, और सबसे अच्छी बात ये है, गर्व है अपने आप पे कि हम जैव मुक्त खेती करते हैं।
1: जैव मुक्त खेती कर रहे
0: जी
1: हैं। तो आप कपास पे ही कर रहे हो या दूसरी फसलों को भी अब लिया
0: सब पे
1: है?
0: करते हैं अब, हाँ
1: सब्जियां,
0: सब्जियाँ पे भी करते हैं, गेहूं पे भी करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं डालते।
1: हमने देखा था जेवरा के अंदर आप बागवानी का जो था उस पर
0: हाँ
1: भी।
0: बागवानी पे, फलों पे, सब्जियों पे, अब सब पे हो गया, पहले कपास कपास पे था, अब
1: हाँ
0: सब्जियों पे, फलों पे, गेहूं पे, सरसों पे, सब पे है अब।
1: अच्छा, तो
0: जी
1: उसमें स्प्रे आपका वही है एक, मतलब जो
0: वे वो ही है जी, वो एक खुराक मंत्री है, जो ये जिंक
1: अच्छा
0: यूरिया
1: अच्छा
0: डीएपी है ना,
1: हाँ
0: ये खुराक मंत्री है, हम 15 दिन बाद अपने पौधे को आराम से दे सकते हैं, जितना एकड़ है उसके हिसाब से हम डाल के दे सकते हैं उसको। 100 लीटर पानी में हम 2 किलो, 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो डीएपी और आधा किलो जिंक डालते हैं, उसका हाफ करके अब तो हमें पता है कि इसमें कितना डालना है, हम कर सकते
1: वो
0: हैं।
1: फसल की हालत बता देगी
0: हाँ जी
1: कि
0: बिल्कुल,
1: कितना देना है। वैसे तो
0: कितना
1: देखो
0: देना।
1: वैज्ञानिक भी सिफारिश करते हैं जिंक सल्फेट का स्प्रे तो
0: हाँ जी
1: गेहूं में करते हैं, जौ में करते हैं,
0: हाँ
1: और
0: जी
1: सरसों में भी कर देते हैं।
0: बिल्कुल
1: वो फौरी तौर पर खुराक है एक, और आपने अपना एक फार्मूला बना लिया
0: हाँ जी,
1: कि इसके अंदर आपने डीएपी भी शामिल कर लिया,
0: जिंक भी
1: जिंक भी कर लिया, और
0: और
1: यूरिया
0: यूरिया भी
1: तो
0: कर
1: है ही
0: लिया।
1: है।
0: हाँ जी
1: तो इसकी कितनी खुराक आपने बताया कि हर 15 दिन बाद दे सकते हो,
0: हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं।
1: फिर नीचे देने की ज़रूरत है?
0: नहीं, जब हम फोलियर कर रहे हैं तो वो सीधा उसके गोब में जाएगा ना,
1: हाँ
0: तो क्या जरूरत है हमें नीचे देने की, धरती में विष फैलाने की कोई जरूरत नहीं है, जो ऊपर चल रहा है ना उसको जरूरत है,
1: अच्छा,
0: उसके ऊपर डालो तो वो पूरे पौधे को कवर करता चलेगा।
1: पूरे पौधे को
0: जी
1: देना।
0: बिल्कुल
1: चलिए, तो अब आपकी एक किट देखा करते हैं हम, जो उसमें लेंस भी है, उसमें कॉपी किताब लेकर आप क्या कराया
0: कुछ
1: करोगे
0: कीट
1: जाकर?
0: ऐसे हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते,
1: अच्छा,
0: तो लेंस की सहायता से देखते हैं कि उसकी आंख कैसी है, तभी तो हम उनकी पहचान करते हैं। देखेंगे कोई किसी कीट के अंदर, इन कीटों को एक डंक होता है, जो किसी अंडे के उसमें डंक चुभोएगा उसका खून पी जाएगा,
1: अच्छा
0: ना वो चल सकता ना वो फिर सकता, उनको हम मांसाहारी कीट बोलेंगे,
1: जी,
0: जो दूसरे के पेट में डंक करेगा और उसको लुंज करके उसका सारा खून पी जाएगा, और वो 1, 2, 2, 4 मिनट बाद वो कीड़ा मर जाएगा।
1: हाँ वो तो नकारा हो गया, बिल्कुल मरे जाएगा
0: हाँ
1: एक
0: जी
1: तरह से।
0: बिल्कुल,
1: हाँ
0: तो इसीलिए हम लेंस की सहायता से देखते हैं, और जो डायरी में लिखते हैं वो हम, जो जिससे किसान डरते हैं, सफेद मक्खी, हरा तेला, चूड़ा, उनकी काउंटिंग करके एक सांझी औसत निकालते हैं, जिससे ये पता चले कि हमारी फसल में किसी भी तरह से स्प्रे करने की जरूरत है या नहीं पेस्टिसाइड की।
1: लेकिन इपकन है तो अब की बार बात करते हैं मनीषा जी, तो कपास में बिल्कुल ही किसान भाई इतना
0: जी
1: हाहाकार मच रहा, गुलाबी सुंडी ने खत्म
0: बिल्कुल,
1: कराया।
0: ये बीटी की वो आ रखी है इसमें, हो रखा है,
1: हाँ
0: हाँ ये पीछे से ही आ रहा है, जो बीज है ना उसमें ही आ रहा है, ये 2 साल से ऐसे ही कर रहा है, अच्छी हो रही है, फिर जब टिंडा बने हैं तो उसमें वो सुंडी आ जाए।
1: उसमें सुंडी आ जाती है, वो बिल्कुल कुछ हाथ नहीं लगता,
0: हाँ जी
1: दो दो मण जो है पैदावार लिए किसानों ने।
0: हाँ जी, कुछ ही से हैं जो 40 मण तक, 40 किलो तक रह गए हैं,
1: चल मतलब एक
0: 20 किलो
1: मण
0: तक
1: है।
0: रह गए हैं, एक
1: हाँ,
0: मण भी नहीं हुई है, कुछ किसान ऐसे भी हैं।
1: तो आपकी जो ये चलता है मुहिम चलती है, यहाँ का क्या रिकॉर्ड है,
0: कुछ
1: क्या
0: किसान ऐसे हैं
1: डाटा
0: जिनको
1: है?
0: 8 मण हुई है,

0: किसान ऐसे हैं जिनको 27 मण हुई है,
1: अच्छा,
0: कुछ ऐसे हैं जिनको 14 तक रही है, ऐसा ही चलता रहा
1: यानी
0: इनमें।
1: प्राइवेट कंपनियों के जो बीज है उन पर भरोसा नहीं कराया जा सकता कि
0: नहीं, अपने
1: वो,
0: खुद के बनाने अच्छे रहेंगे।
1: लेकिन देखो खुद का हाइब्रिड कुकर बना सके किसान, बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बहुत तकनीकी काम है ये तो।
0: मनबीर जी ने बनाया था एक बार।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: तो कोई एक दो
0: मनबीर
1: किसान कर
0: रेडो
1: ले तो कर ले, लेकिन ये काम उसकी बात करते हैं तो थोड़ा मुश्किल सा है,
0: मुश्किल है जी ये।
1: क्योंकि उसमें नर्मदा का ध्यान रखते हुए आगे उसका किस तरह के होना है, वो बड़ी तकनीकी काम है ये
0: हाँ
1: उसमें।
0: जी,
1: चलो, लेकिन अब इसके बाद आपके ग्रुप के बारे में और क्या कुछ चल रहा है, कोई सकारात्मक कोई बात, कोई पुरस्कार, कोई मेले ठेले में जाना होया हो कुछ इस
0: हाँ हम
1: प्रकार?
0: पूसा गए थे और
1: जी
0: हिसार जाते हैं मेले में
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो वहाँ भी अलग से चर्चा होती होगी।
0: हाँ जी बिल्कुल, एक वहाँ से मनबीर जी हैं, गुड़गढ़ बनाया करें वे अपने, उनके गुड़ का 100 रुपये किलो का
1: अच्छा,
0: रहता है,
1: 100 रुपये किलो दे
0: सौ
1: रहे
0: रुपये
1: हैं।
0: किलो ऑर्गेनिक है ना उनका, ईख भी ऑर्गेनिक है और फिर वे बनावे भी अपने घर पे हैं, ऑर्गेनिक है उनका
1: अच्छा, तो
0: जी।
1: चलो वो एक अलग विषय हो गया, लेकिन हम तो ये था कि वो किसान आज कितनी प्रगति कर रहे हैं
0: जी
1: आपके
0: बिल्कुल,
1: ग्रुप के साथ वाले,
0: हाँ जी,
1: वो
0: सब किसान प्रगति कर रहे हैं, जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं वो प्रगति कर रहे हैं, और कोई किसान प्रगति नहीं कर रहा।
1: बाकी तो देखो आजकल किसी को देखे, कंपनियों को देखे, बाजार को देखे, किसान को लूटने में है
0: जी
1: कि उसकी
0: बिल्कुल,
1: जेब काट लो, कितनी काट सकते हो, दवाई बेच के, नकली बीज बेच के, या
0: बीज
1: कुछ।
0: के साथ ही दवाई बांधेंगे नहीं तो बीज ही नहीं देंगे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, मंडूसी का बीज चाहे किसी किसान का है या नहीं है, उसके साथ पर कट्टे के साथ बीज देंगे। अब जब गेहूं लगाएंगे और कोर के गेहूं होंगे तो यूरिया देना बंद कर देगा दुकान वाला, ये बोलेगा कि या दवाई लेगा तो यूरिया दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा।
1: ओहो, मतलब ये भी अड़ा दे हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल,
1: तो चलो एक बार मान ली दवाई ले ली, उनके कहते हैं स्प्रे करना ना करना तो आपके हाथ में है।
0: किसान करेगा ना फुटाव के लिए करेगा, जो ले आया वो करेगा, क्यों वेस्ट जान देगा वो उसने।
1: चलो, लेकिन देखो आपके साथ जब आप ये काम कर रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी ये भी तो बनती है, इस बारे में तो समझाओ किसान भाइया ना। हाँ
0: नहीं मानेंगे, जब हम बात करते हैं ना
1: जी,
0: उस टाइम मान जाते हैं, लेकिन जब ये पता चला ना इस किसान ने 45 मण गेहूं निकाल लिए प्रति एकड़, तो
1: 45
0: मैं
1: बता दो, 60
0: 50 मण निकालूंगा,
1: 60
0: एक
1: पर
0: बैग यूरिया और डाल दूंगा पर निकालूंगा इससे ज्यादा। ओढ़ लाग रही है एक दूसरे की,
1: ओढ़
0: ये
1: लगी
0: नहीं
1: हुई है
0: सोच रहे कि हम अपनी थाली में जहर परोस रहे हैं।
1: जी, और घर के लिए थोड़ा बहुत लगा लेंगे एक दो डाबड़ा, वो उसमें कुछ नहीं
0: तो
1: गिरते।
0: फिर औरा के लिए भी तो देखें
1: यही
0: ना,
1: तो बात है, मानवता यही आके खत्म हो जाती है।
0: मानवता पे अत्याचार है ये, अपने लिए तो बचा लिया,
1: जी
0: दूसरे के लिए हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके खा रहे हैं।
1: जाके, बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ, और जो
1: और
0: फास्ट फूड खाते हैं उनमें भी तो इतना ही है,
1: जी
0: एक
1: हाँ,
0: गेहूं बचा लिया हमने अपने लिए तो, और जो सब्जी खरीद रहे हैं बाहर से कुछ भी खरीद रहे हैं सब में इतना ही है। जो किसान खुश हो रहा है ना कि मैंने अपने बचा लिए, और कितने भी जाओ तो सबके लिए परोस रहा, किसान ने
1: नहीं
0: परोस
1: देखो
0: रहा है।
1: बच्चे तो हम कहीं भी नहीं बनी चाहिए, हम दूध की बात करते हैं, दूध कौन सा आज उतना ताकतवर रह रहा
0: नहीं जी,
1: है ना, जो पशु चारा हम खिलाते हैं उसको
0: उसमें भी इतना ही पेस्टिसाइड
1: उतना
0: डालते
1: ही है, वो
0: हैं,
1: पशु के पेट में जाएगा, दूध के रास्ते हमारे शरीर में आएगा,
0: ये बिल्कुल सही बात
1: है
0: है।
1: ना। इसी तरह से कोई भी चीज़ है, हम सब्जियां लगा लें, फल लगा लेते हैं, जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो है वो कि जहर का असर उसके ऊपर आ रहा है, और इसी की वजह से समस्याएं आ रही है
0: हाँ
1: दुनिया
0: जी
1: भर की।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए, अच्छा लगा। तो कोई गीत वगैरह कोई एक आधा और इस तरह का आपके ग्रुप का हो तो सुना दो, मौका है आज तो, और आज मनीषा जी आई हुई है तो हम तो चाहते हैं कि पूरा ग्रुप जो है आपका इसी तरह से तरक्की करता रहे, इसी तरह से लोगों को जागरूक करता
0: एक
1: रहे।
0: दिन हमारे ग्रुप की रिकॉर्डिंग करो आप, फिर सबको सुना देना हमारे गीत।
1: अच्छा
0: जी
1: चलो, आज तो आप आ रहे हो, आज तो आप सुना दो, कदे ग्रुप का भी बनाओगे प्रोग्राम, कोई 5-7 महिलाएं आपकी होंगी
0: जी
1: हैं उन्हें बुला के, तो एक अच्छा सा कोई ऐसा चेताने वाला सा गीत।
0: ये ही है, जो कंधे पे स्प्रे की टंकी टांग के पुरुष घूम रहे हैं ना,
1: अच्छा
0: मैं उनको ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि मतलब महिलाएं बहुत दुखी हैं उस जहर की टंकी से,
1: अच्छा कैसे?
0: उस पे एक गीत है।

0: सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं इस बात से बहुत दुखी हैं कि किसान पूरा दिन खेत में टंकी टांग के स्प्रे करता रहे।
1: करे के मतलब वो कीड़ा नहीं इतना

0: थोड़ा बढ़ा दिया कि उसके वो उसमें वो दिखता नहीं, वो इतना सब्र उसमें है नहीं कि भी वो जो आपकी प्रैक्टिस है उसके ऊपर अमल करे, कर रहे तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है ना। तो कुछ और कहना चाहेंगे अपने ग्रुप के बारे में?
1: यही चेतावनी दूंगी कि जहर मुक्त थाली करो, सब
0: हाँ
1: मिलके किसी न किसी, ये जो चल रहा है बीमारी चल रही है, इससे बचने के लिए जहर मुक्त खेती करें और जहर मुक्त थाली
0: बनाए अपने।
1: बनाएं।
0: चलिए भी बहुत अच्छा लगा मनीषा जी, आज आप आए, अपने बारे में, ग्रुप के बारे में और जितने भी आपके किसान बहने हैं उन सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं देना कि आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। आप इसी तरह से मानवता को बचाते रहें और अपना एक विकास करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका चौपाल
1: जी
0: में आने के लिए।
1: आपका भी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: भैया तो सुनी भेंट वार्ता है किसान से, और भैया मनोरंजन करवाओगे, भाइयों को रागनी सुनाओगे, गायक कलाकार होंगे वेद प्रकाश कौशिक अलीपुरिया और उनके साथी।
3: रघु राजा की लड़की चंद्रवती और ऋषि उद्यालक के आपस में सवाल जवाब होते हैं, एक बात के द्वारा कवि ने क्या कह दिया कैसे।

0: भैया यार अग्निशमन भैया ने गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक और उनके साथी, और इस रागनी के साथ है कृषि जगत कार्यक्रम का दस समय करें हाड़े समाप्त और आगे सुनोगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और ये बारी है भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार की। तो भाई ग्रामीण संसार में आज बुधवार है और बुधवार का दिन आगरा हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बालक मंडली का। तो भाई शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि भाई जो भी बच्चे फ़ोन करें थोड़ा हर रेडियो से दूर हट के बात करें, और ऐसा है कि भाई जो भी बात करें थोड़ी कविता वगैरह इस तरह की जो शिक्षा पर बातें वो बताने की कोशिश करें। माँ बाप से भी ये विनती रहेगी कि छोटे बच्चे से बात करो, पहले थोड़ी उसको याद करवा दें और फिर उसको फ़ोन करवाएँ ताकि वो बच्चे ठीक तरीके से बोल सकें और उनका भी हौसला बढ़े। क्योंकि बच्चा अगर शुरू में बोल नहीं पाता, एकदम से उसको फ़ोन दे देते हैं, फिर वो दिक्कत में आ जाता है, डर जाता है बच्चा। तो पहले उसकी थोड़ी तैयारी करवा लें और फिर उसको फ़ोन पे बात करवाएं, अच्छी तरीके से बात करवाएं ताकि सही तरीके से स्पष्ट वो बात कर सकें, उनका हौसला भी बढ़े और बार बार जिज्ञासा भी उनके मन में उत्पन्न होए, याद करने की उनकी चशक भी बनी रहे। तो जो नए बच्चे हैं जो फ़ोन करना चाह रहे हैं उनके लिए हम एक बार बता दें कि हमारी जी टेलीफोन जो लाइनें हैं वो तीन टेलीफोन नंबर लाइनें चालू रहेंगी। रोहतक का कोड 01262 लगाओ पहले, और फिर 255-446, 255-447, 255-448 ये लाइन पर आप फ़ोन करें और फ़ोन करके भाई नन्हे मुन्ने बच्चे अपना शुरुआत कर सकें। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता हैं। पहले हेलो हेलो हेलो हाँ बेटे नाम हेलो
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते बेटा, नाम बताओ।
1: कृतिका खोला, गांव दड़ोली, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी।
0: कृतिका कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
1: सेवंथ।
0: सेवंथ, क्या तैयारी की आज के लिए?
1: आज एक पोयम है मेरे समय के ऊपर।
0: अच्छा सुनाओ बेटा।
1: वक्त की हर एक टिक को तुम एक नई ललकार समझो, जो बीत गया वो सपना था, इस जागते पल को स्वीकार समझो। मत बैठो हाथ पर हाथ धरे कि किस्मत कब बदलेगी तुम्हारी, हर बहता सेकंड कहता है अब उठो और अपनी समझो बारी। दौलत से घड़ी तो मिलती है पर बीता पल कोई खरीद न पाया, जिसने भी कद्र करी इसकी उसने उसने ही जग में नाम कमाया। मंजिल दूर नहीं तुमसे, बस आलस का तुम त्याग करो, जो आज मिला है वरदान तुम्हें उस वर्तमान से प्यार करो। धन्यवाद।
0: शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, क्योंकि समय की कदर करनी चाहिए और समय को पहचानना भी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम। अगला फोन। हेलो
2: हेलो
0: नमस्कार जी।
2: हाँ जी बच्चे बात करियो
0: जी, फोन से थोड़ा रेडियो से थोड़ा दूर हटके बात कराइयो जी। हेलो नाम बताओ बेटा। कहाँ से बोल रहे हो?
3: मोनिका।
0: क्या सुनाओ, रेडियो से थोड़ा दूर हट के बात करो बेटा।
3: हाँ। पानी डालो पानी डालो मर जाएगी, पानी डालो क्या जाएगी।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई, दोबारा से याद करियो अच्छी तरीके से, फिर सुनाना अगला फोन। हेलो
4: हेलो
0: हाँ नाम बताओ बेटा।
4: अंकल।
0: हाँ
4: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई, कहाँ से बोल रहे हो, नाम बताओ पहले।
4: कानपुर जिला सोनीपत।
0: अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: सेकंड।
0: सेकंड, क्या सुनाओगे आज?
4: पोयम।
0: सुनाओ बेटा।
4: हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत मारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पे गोली जाएंगे, मर जाएंगे, बच जाएंगे, देश की बनाएंगे।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। अगला फोन। हेलो
5: हेलो
0: हाँ नाम बताओ बेटा।
5: अंकल नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
5: मेरा नाम यश है।
0: यश, कहाँ से बोल रहे हो बेटा?
5: मैं टिटोली गांव से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा, तो क्या तैयारी कर रखी बेटा आज?
5: मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
0: सुनाओ बेटा।
5: हम दीवानों की है क्या हस्ती, आज है तो यहाँ कल है वहाँ, चले मस्ती का आलम साथ चले। हम धूल उड़ते जहाँ चले,
0: धूल उड़ाते जहाँ चले,
5: हाँ। आए बनकर असला, अभी आंसू बनकर बह चले। अभी सब कहते हैं ही रह गए हैं, अरे तुम कैसे आए हो।
0: भाई पूरी तो नहीं सुनाई,
5: इतनी है।
0: अच्छा, चलो बहुत अच्छे भाई, शाबाश।
5: मेरी बहन भी आपसे बात करना चाहती।
0: अच्छा अच्छा, कराओ बेटा।
5: अंकल जी नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
5: मेरा नाम सिया है।
0: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
5: सिक्स।
0: आप क्या सुनाओगे?
5: कविता सुनाना चाहते हैं।
0: हाँ सुनाओ।
5: रन रन बीच कोड़ी भय भय कच्चे तक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोड़े से बन गया वा को पाला था। गिट्टे ने कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा रिमस पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघली लेकर स्वाद उठ जाता था। राणा की पुत्री फिर नहीं तब तक चेतक मुझ जाता था। कौशल दिखलाया चलो में, उड़ गया अभियान कभालों में, निर्भक गया वह डालो में, सरपट दौड़ा करवालों में। धन्यवाद।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अगला फोन। हेलो।
6: हेलो अंकल।
0: हाँ बताओ बेटा, नाम बताओ।
6: आर्यन मलिक।
0: कहाँ से बोल रहे हो भाई मलिक साहब?
6: उमरा से।
0: उमरा से, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
6: सेकंड।
0: सेकंड, क्या सुनाओगे आज?
6: कविता।
0: सुनाओ बेटा।
6: वीरों का ये प्यारा देश, सबसे सुंदर सबसे विशेष, हंसकर जिसने प्राण लुटाए, भारत का सम्मान बचाए, हम भी ऐसा काम करेंगे, देश का ऊंचा नाम करेंगे। धन्यवाद।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो।
7: हेलो,
0: नाम बताओ बेटा।
7: दादा जी नमस्ते।
0: नमस्ते बेटे, नाम बताओ।
7: वीर।
0: वीर कहाँ से बोल रहे हैं भाई?
7: भैनी सुरजन से।
0: भैनी सुरजन से, कौन सी क्लास में पढ़ते हो वीर?
7: फिफ्थ।
0: सिक्स्थ, क्या सुनाओगे आज?
7: कविता।

दूध मलाई का खाया रे करता किसे चीज की ना कोन्या, खोटी बाणी बोल रे मतन्या, मैं के तेरी माँ कोन्या, हो महापोया की वास रद रात चले सीढ़ी रात कसाई थी, तू सुखे मैं आले में रात मरी जड़ाई थी, मेरे मन में घना प्यार अरे तेरे मन में जगा कोन्या, खोटी बाड़ी बोल रे मतन्या, मैं के तेरी माँ कोन्या, हो 6 महीने का

खंड मी रच छुटाई थी, खोटी बाणी बोल रे मतना, मैं के तेरी माँ को ना, मेरी छाती पे लेटा करता जनू पुला का वो ढेर पड़ा, बाल का मैनू दिखे था जनू सिंगनी का सेर खड़ा, माँ के मन में बहुत समाई, बेटे के मन में हूँ हाँ कोन्या, छोटी बाणी बोल रे मतना, मैं के तेरी माँ कोन्या, हुआ गाबरू आई रे जवा।

0: भूल गया माँ के दिल में बेटा रे बेटा, बेटे के मन में माँ को न्या, खोटी बाणी बोल रे मतना, मैं के तेरी माँ को न्या। थैंक यू अंकल।
1: शाबाश बे गुड़िया, बहुत अच्छा सुना है, शाबाश। अगला कौन? हेलो भाई।
2: हेलो,
1: हाँ बेटे, नाम बताओ।
2: भविष्य।
1: भविष्य कहाँ से बोल रहे हैं भाई? भैनी
2: मैंने सूजन से थर्ड
1: सूजन से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई? थर्ड। क्या सुनाओगे?
2: कविता।
1: कविता सुनाओ भाई।
2: एक था सेठ चिल्ली, उसने पाली बिल्ली, बिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में थी किल्ली, किल्ली चढ़ गई बिल्ली, फिर

0: थैंक यू दादाजी।
1: शाबाश भाई, बहुत अच्छे। हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ, नाम बताओ जी।
0: नमस्ते अंकल जी।
1: हाँ बेटे, नाम बताओ।
0: मैं आरती बोल रही हूँ, गांव डाणी से, श्री श्योराम जी की पोती,
1: अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
0: 10th में।
1: टेंथ
0: पोयम
1: में। क्या तैयारी करी आज की? सुना दो।
0: सपनों में रख आस्था कर्म तू किए जा, त्याग के ना डर आलस परित्याग किए जा, बोलती कर ना घबरा, गिर कर फिर हो जा खड़ा, समस्याओं को रास्तों से निकाल दे, चट्टाने भी हो तो ठोकर से उछाल दे, रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, जरूरत नहीं है किसी मुसीबत से घबराने की, जो पाना है बस उसकी एक पागल की तरह चाहत कर, करता रहे कर्म अगर साथ में खुद खुदा की भी इबादत कर, फिर देख किस्मत क्या क्या रंग दिखलाएगी, तुझको तेरी मंजिल मिल जाएगी, मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद अंकल।
1: शाबाश भाई, मेहनत करने वालों को अपनी मंजिल जरूर मिलती है। हेलो,
0: अंकल जी नमस्ते। अंकल
1: नमस्ते बेटा, नाम बताओ।
0: जी, अनु सतवे दंपतवार की पोती।
1: अन्नू, कहाँ से बोल रही भाई?
0: अंकल सुनारिया से।
1: सुनारिया से।

0: कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
1: अंकल
0: 10th। क्या सुनाओगे आज?
1: एक छोटी सी कहानी है। हाँ,
0: अच्छा, छोटी सी।
1: ये 10वीं के बेच गई।
0: अच्छा, चलो बताओ बेटा।
1: एक गांव में एक लड़का रहता है। वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है। सब गांव 10वीं क्लास में होता है, सब गांव वाले कहते हैं कि यह पूरे गांव में फर्स्ट आएगा। तो वह लड़का परीक्षा देने जाता है। एग्जाम टाइम आता है, वो परीक्षा देने जाता है। वह परीक्षा देकर आता है तो सबको रिजल्ट का इंतजार होता है। तो रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वह लड़का एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, क्योंकि उसे पढ़ने का इतना समय नहीं मिलता था। वह अपना घर भी साथ में चलाता था। फिर सब लोग उसको ताने मारने लगते हैं, उसे बुरी भला कहने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यह लड़का सहन नहीं कर पाता और वह अपने उस्ताद के पास जाता है। उस्ताद से कहता है कि उसे अपनी सारी बातें बताता है। उस्ताद उसे कहता है कि तुम अपने हाथ में एक लोटा लेना और उसमें ऊपर तक दूध को भर लेना। याद रहे, उसमें से एक भी बूंद नीचे ना गिरे। लड़का ठीक वैसे ही करता है, उसमें से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरने देता। और उसका फोकस उस दूध पे होता है। और बाकी लोग उसे कहते हैं कि मतलब कि उसे बुरी बुला कहते हैं, पर वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका फोकस
0: लोटे
1: उसका
0: पर था।
1: फोकस पे था। इसलिए वह मतलब हमें इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करना चाहिए, ना कि दूसरों की बातों पर। थैंक यू अंकल। अंकल मैं भाई
0: बिल्कुल।
1: भी बात करना चाहता है।
0: हाँ
1: अंकल
0: हाँ कराओ बेटा, कराओ।
1: जी नमस्ते। अंकल
0: नमस्ते बेटा, नाम बताओ।
1: जी देवराज।
0: देवराज, कौन सी क्लास में पढ़ते हो भाई?
1: अंकल जी सिक्स।
0: क्या सुनाओगे आज?
1: अंकल जी पोयम।
0: सुनाओ बेटा।
1: माखन चोर नंदन किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर। हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूछती जिन्हें दुनिया सारी। आओ सब मिलकर गीत सुनाए, हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। थैंक यू अंकल।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। हेलो, तो देखो कितनी जो शिक्षा प्रद जो बातें हैं कि हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। लक्ष्य हमारा मजबूत होगा, कोई कुछ भी कहे, और अगर हमने मन में ठान रखी अपनी मेहनत करनी है तो चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो भी ये कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो मन को छू जाती हैं। और भाई थोड़ा बहुत जिक्र ये भी कर लें कि देखो बारिश का मौसम है, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, कोशिश रखें कि भी आसपास का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि आसपास अगर पानी इकट्ठा हो जाता है फिर मच्छर पैदा होते हैं और फिर बीमारियाँ फैलती हैं। तो बारिश का जो गंदा पानी है उससे हमें बचना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि आसपास भी कोई गंदगी ना रहे, क्योंकि ये जो मौसम होता है, ये देखो बारिश का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि सारी फसलें बारिश के ऊपर निर्भर होती हैं। लेकिन कुछ आस पड़ोस में ऐसा पानी इकट्ठा हो जाता है जो कि भाई गंदगी का इकट्ठा होकर छिड़ जाए, उसमें फिर निरे मक्खी मच्छर पशुओं ने ही परेशान करें और मनुष्यों को भी परेशान करें। तो इसका कोई ऐसा समाधान थोड़ा सोचना चाहिए, करना चाहिए कि आसपास हमारे साफ़ सफाई रही रहे। इसी प्रकार जो हमारे पशु हैं, पशुधन को भी साफ़ सुथरा सूखा स्वच्छ रखने की कोशिश करें, ताकि उन्हें भी मक्खी मच्छर तंग ना करें और ताकि वो स्वस्थ रहे रहें और दूध उत्पादन पर भी कोई असर ना पड़े। साथ साथ में बच्चों के थोड़े बहुत खाने पीने की भी बात करें हम, कि भाई खाना पीना बच्चे अपना थोड़ा सुधारें, क्योंकि बाहर का जो खाना है उसके आदि ज़्यादा हो चुके हैं, मोबाइल के ज़्यादा आदि हो चुके हैं। तो बच्चे थोड़ा ध्यान रखें कि वे मोबाइल से दूरी बनाएं, और जो बाहर का जो बाज़ार का खाना पीना है, जंक फूड जिसने कह दे हैं, उससे भी दूरी बनाएं। घर का बनाया बनाया खाना, सादा खाना, देसी खाना, ये खाने की कोशिश करें, और बाहर के खानों से थोड़ा परहेज करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और पढ़ाई में भी मन अच्छी प्रकार से लगेगा। इसी प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूरी है, क्योंकि पौष्टिकता अगर हमारे शरीर में होगी, पौष्टिक खाना खाओगे हम तो शरीर भी हष्ट पुष्ट बनेगा, और अगर बाहर का जो खाना खाओगे हम तड़ा भुना, तो उससे हज़ारों बीमारी घर कर जाती हैं शरीर के अंदर, ना सेहत बनती, ना दिमाग चलता, और बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। फिर कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, ये नहीं होता, जो काम करते हैं उसमें दिल नहीं लगता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो ये सारी की सारी खाने की कमी के साथ होता है। एक स्वस्थ शरीर के

0: अंदर स्वस्थ दिमाग निवास करता है, स्वस्थ मन निवास करता है, स्वस्थ दिल निवास करता है। तो ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, और बच्चे ख़ास तौर पे जो बाहर जाते हैं वो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो उसका आकर्षण जो है थोड़ी देर का है, जीभ का स्वाद है वो थोड़ी देर का है, लेकिन अगर हम चाहें तो भाई अपना घर का बनाया बनाया खाना खा कर स्वस्थ रह सके हैं। इसी प्रकार थोड़ा बहुत बातें बच्चों की देखते हैं। अगला फोन, हेलो हेलो
1: बोल,
0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार,
1: कविता सुना रहे बच्चा जी?
0: हाँ हाँ, बात करवाओ जी। हेलो, बोलो बेटा।
1: ठीक है जी, कौन
0: सुना? चलो कोई नहीं, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत बातें बच्चों को ज़रूर, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनने भी थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों के नुकसान के बारे में बताएं और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लाभ के बारे में बताएं। बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो माता पिता हैं उनको भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको अपने बड़े बुज़ुर्गों के पास ज़रूर थोड़ा बहुत समय दें, बिठाने की कोशिश करें, ताकि जो पुरानी बातें हैं, रीति रिवाज हैं, हमारे जो पुराना समय था उसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो और जानकारी मिले कि भाई हम किस प्रकार, हमारा जो परिवार है वो कितना, परिवार के बारे में ज़रूर बताएं, रिश्तेदारों के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि बच्चों, क्योंकि शहर में रहने वाले बच्चे तकरीबन ऐसे हो जाते हैं कि उन्होंने ना तो गाँव के बारे में पता होता, ना जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, हमारी संस्कृति है, उससे वो थोड़ा अछूते रह जाते हैं। तो ध्यान रखें और कोशिश करें कि उस संस्कृति से उनको अवगत कराया जा, बताया जा अपने परिवारों के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, हर तरीके की जानकारी बच्चों को बात बातों में देने की कोशिश करनी चाहिए। और बुज़ुर्गों के पास बिठाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि भाई एक तो जो पुरानी कथाएँ हैं वो सुनने को मिलें, बच्चों को बहुत सी बातें याद भी हो जाती हैं। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी,
2: बच्चे बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, करवाओ।
2: ले बोलो, बोले
0: हेलो
2: बोले।
3: हेलो, नमस्ते बाबा।
0: हाँ नमस्ते बेटे, बोलो, नाम बताओ, नाम बताओ बेटा अपना।
3: केशवी।
0: केशवी कहाँ से बोल रही है केशवी?
3: बोंद
0: क्लास है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा?
3: फर्स्ट।
0: क्या सुनाओगे?
3: पोयम।
0: पोयम सुना दो, सुनाओ बेटा।
3: ऊपर हवा चलती है,
0: ऊपर पंखा चलता है,
3: ऊपर ऊपर नीचे हवा चलती है।
0: अच्छा,
3: ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चलती
0: है। अच्छा,
3: साल साल मम्मी को सोच कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नीचा दी।
0: अच्छा,
3: दूर में उड़ जाएगी, मम्मी बोलती हंस के हवा है नी, बचकर
4: पकड़े तुझे,
3: मगर तुझे मारूंगी।
0: भाई केशवी खुद याद नहीं करी भाई, सुन सुन के बोल रहे हो। अगली बार याद करके जब कहना बेटा, याद करना, कोशिश करना है। हाँ
3: हेलो,
0: हाँ हाँ जी, हाँ जी
3: बाबा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते बेटा, नाम बताओ। तो आप भी?
3: वेदिका।
0: हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? थर्ड। आप क्या सुनाओगे भाई?
3: पोयम।
0: हाँ सुनाओ बेटा।
3: काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, बोलो कैसे आकर पकड़ कर नाचे सब सब छाए, जैसे काले कम्बल कितने सुंदर लगते, बादल पेड़ों जैसे जैसे जैसे हाथी के जाते, हाथी के जोड़े नन्हे झलकन गए, बाप मनुष्य बादल बरसे बरसाए।
0: शाबाश, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। हेलो
5: हेलो,
0: हाँ जी,

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
0: मैं एक पोएम सुनाना चाहता हूँ।
1: भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप?
0: मैं टेंथ में पढ़ता हूँ जी।
1: टेंथ की आवाज़ तो नहीं लगती आपकी।
0: मैं फेल हो गया था सर।
1: नाम क्या है आपका?
0: सत्यवान।
1: सत्यवान कहाँ से बोल रहे हो? अरे
0: धारेडू गाँव हजी दीवानी जिला है।
1: हाँ धारेडू गाँव मानेडू के पास।
0: सुनाए सर।
1: हाँ सुनाओ।
0: याद करो उन वीरों की कुर्बानी जिनके दम पे हमने आजादी पाई थी। झांसी की महारानी जिसने लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई थी। दादा टोपे और महाराणा प्रताप जिनके शहीद भगत सिंह जिनके दम पे हमने आजादी पाई थी। वीर बहादुर थे वे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे ने अपनी जान गंवाई थी। वीर भक्तों के शहीद भगत सिंह जैसे के बलिदान से हमने ये आजादी पाई थी। हाजी
1: शाबाश बहुत अच्छे भाई।
0: दो लाइन और रही सर।
1: अच्छा अच्छा दो भी कह दे आस्ते देखी जाएगी। हाँ हाँ बोले।
0: हाँ बोले बोल रहे सर।
1: हाँ
0: थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर।
1: अच्छा कोई बात नहीं बोल दे बोल दे।
0: याद करो उन वीरों की कुर्बानी को जिनके दम पे हमने आजादी पाई थी। शहीद भगत सिंह आजाद सिंह चंद्रशेखर जिनके दम पे हमने ये स्वतंत्रता पाई थी। लड़ते लड़ते झांसी की महारानी जिसने अपनी जान गवाई थी। नन्हे सपूत को बांध करके कंधे पे उसने अंग्रेजों से लड़ी करी लड़ाई थी। याद करो उन वीरों को जिनके दम पे हमने आजादी पाई थी।
1: शाबाश शाबाश बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी
2: ये बताइए बात करिए।
1: हाँ जी करो।
3: हेलो
1: हेलो
3: नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा नाम बताओ।
3: दिया।
1: दिया कौन सी क्लास में पढ़ती है दिया? हाँ बेटा दिया।
3: हाँ
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
3: सिक्स्थ।
1: सिक्स्थ और कहाँ से बोल रहे हो?
3: बोंद कला।
1: बोंद कला दिया क्या सुनाओगे बेटा आज?
3: पोयम
1: सुनाओ।
3: जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ हरियाली से ही है खुशहाली। सुंदरता मनो हरने वाली पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। फूल और फल तुम्हें पाओ जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ।
1: शाबाश बहुत अच्छे भाई। हेलो
4: हेलो।
1: हाँ नाम बताओ बेटा जल्दी।
4: चिराग।
1: कहाँ से बोल रहे हो बेटा?
4: कनाडा।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
4: थर्ड में।
1: अच्छा सुनाओ क्या सुनाओगे?
4: कविता
1: सुना दो।

0: माता एक कुमारी।
1: शाबाश, बहुत अच्छे भाई। देखो जितने बच्चों ने भी फोन किए, कविताएं सुनाई, जो भी शिक्षा पर कहानी लेकिन हो छोटी वो हर बार सुनाएं, याद करें अच्छी तरीके से। और भाई सभी का धन्यवाद। और अब देख लेते हैं भाई घड़ी की तरफ, कार्यक्रम का समय समाप्त। बलजीत भाई ने दें इजाज़त, सारे बाण भाई आ रहे, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। फिल्म का नाम है श्री 420।

श्री 420 ये था फिल्म का नाम, जिसका गीत आपने मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की है एस डी बर्मन।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और एसडी बर्मन का संगीत पद किया गीत आपने सुना चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। आवाज़ थी किशोर कुमार की। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में आपने सुना चोरी चोरी फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं मुकेश की आवाज़ में छलिया फिल्म से। कमर जलालावादी के बोलों को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

छलिया फिल्म से आपने सुना मुकेश की आवाज़ में ये गीत। कंवर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आइए आपको सुनवाते हैं बरसात फिल्म से गीत। शैलेंद्र के बोलों को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में बरसात फिल्म से। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं आज़ाद फिल्म से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है।

आज़ाद, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने लता मंगेशकर और चितालकर की आवाज़ में सुना। साहिर लुधियानवी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं रात अकेली है फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा है इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

रात अकेली है, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। साहिर लुधियानवी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में परख फिल्म से। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं सलील चौधरी।

परख फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। शैलेंद्र के बोल थे, सलील चौधरी का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, धरती फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना धरती फिल्म से ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, धरती कहे पुकार के फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

धरती कहे पुकार के। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में काली घटा फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

कालीघटा फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म से गीत। कमाल अमरोही के बोल हैं, धुन तैयार की है गुलाम मोहम्मद ने।

लता मंगेशकर के गाए पाकीज़ा फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। अगला सुनवाने जा रहे हैं आपको सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगी पंकज कुमार की गाई गज़लें। सुनते हैं इनकी आवाज़ में कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं पंकज कुमार की गाई गजलें।

0: इसी प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपने पंकज कुमार की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित

0: राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95.56 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जैस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
9: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem, Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
8: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex. In a joint press statement at the temple premises, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: Yogyakarta ke is bhavya mandir complex mein ab jab hum punarnirman ka kaam karne ja rahe hain aur ye UNESCO ka world heritage hai mujhe pura vishwas hai aaj ke baad bharat ke yatri to yahan zarur aayenge duniya ke dur dur kshetron mein kahin par bhi jaye hame kahin na kahin bharat ke sanskrutik virasat ke darshan hote hain.
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah and discussed about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counter-Terrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs Sibi George and Deputy Foreign Minister of Russia Dmitry Lubinsky co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. The Pinaka LRGR rocket is designed

आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना कार्यक्रम का ये पहला गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं दोराहा फिल्म से चुनिंदा गीत। कार्यक्रम में अगला गीत एक बार फिर से आशा भोसले के मधुर स्वर में।

आशा भोसले की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कार्यक्रम एक फिल्म से। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH। कार्यक्रम एक फिल्म से के तहत आज आप सुन रहे हैं दोराहा फिल्म से चुनिंदा गीत। अंतिम गीत कार्यक्रम का सुनवाने जा रहे हैं एक बार फिर से आशा भोसले की आवाज़ में।

आशा भोसले के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, इसमें आज आपने दोराहा फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और उन गीतों को संगीत से संवारा था सपन जगमोहन ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों

0: का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार,
2: धन्यवाद।
0: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मानसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहाँ सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है। तो पूरे पैटर्न को, और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने ज़्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पर ज़्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
0: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एल नीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एल नीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है।
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, और रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है,

0: पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है। तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है। तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है, इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए कि आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है। तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगले स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमोसफेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ

0: पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है। मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस। यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब, मतलब कि भाई अलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय, मौसम विभाग, एनडीए में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना, कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए, जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी।
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया, वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली,
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है, तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे 3 हफ्ते का पीरियड आया, नहीं मिली वर्षा, तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलिएंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए, कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10-15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा,

0: उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे, हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है। AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है। और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए, तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन उससे भी मिलता है, और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप

0: हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच ले आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सके, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है चाहिए, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है कि मानसून अगर

0: 10% कम भी रहता है, उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई, उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है, और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम मन चाहे गीत में आप सबका स्वागत है।

लोफर, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

संगीत था। सुना चाहा था आप सबने रतिया से जीवन सिंह बुक, शंटी बुक, सिमरन बुक, कौशल्या रानी, मनकीरत बुक, जश्न बुक, भूषण खेड़ा और गुरछिंदर बुक, फतेहाबाद से बिट्टू युवराज, भोविक और गगन अमरपुरी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से ये खत आया था हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का, दिल्ली शहर मोरी गेट से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता जिन्होंने ये खत लिख भेजा था दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। उम्मीद करते हैं आप सबने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर गांव गोविंदगढ़ माझी वाला राजस्थान से राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जिन्नू, मन्नू, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वड़वाल, शिव सेठी करणपुरी, स्माइल टुटेजा, नेत्राम कडेला और पाल करणपुरी, बुराला धरन से दत्ता घयाल, सुनीता घयाल और गजानंद घयाल, करनाल से खत आया है सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, सुनीता शर्मा और आशा गुगलानी का, भिवानी हरियाणा से ये फरमाइश हमें लिख भेजी है दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी बंसल, कमल कुमार बंसल, गर्विश बंसल और तमन्ना बंसल ने। आप सबने सुनना चाहा है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में बेताब फिल्म से गीत। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत दिया है आर डी बर्मन ने। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर बेताब फिल्म से ये गीत।

बठिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। बक्सर बिहार से ये ख़त आया है शरफुद्दीन अंसारी और फातमा खातून अंसारी का। डुमराव से ये फरमाइश मिली भेजी है वलीउल्ला अंसारी और अस्मा नाज अंसारी। चमन पार्क दिल्ली से आप हैं डॉक्टर सोनम और अदीबा। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और गुलफराज भागलपुरी। गोला बाजार बक्सर से ये खत हमें लिख भेजा है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। आप सबने सुनना चाहा है किशोर कुमार की आवाज़ में मंजिल फिल्म से गीत। गीत के बोल लिखे हैं योगेश ने, संगीत से सवारा है इस गीत को आर डी बर्मन ने।

0: नमक हलाल, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने, संगीत दिया है इस गीत को बप्पी लहरी ने। सुनना चाहा है आप सबने। संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, संदीप, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। हनुमानगढ़ राजस्थान से आप हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सबकी पसंद पर आइए सुनवाते हैं आपको नमक हलाल फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: अरे

रोटी कपड़ा और मकान, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

रोटी कपड़ा और मकान, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। वर्मा मलिक के बोलों को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में जख्मी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं गौहर कानपुरी ने और संगीत से सवारा है इस गीत को बप्पी लहरी ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और अगला खत चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव, अलख, चरणदास और रेखा।

गांव फरासी से राजकुमार डूटी, सरजीत सिंह डूटी, प्रमोद कुमार डूटी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान, सारिका, सुरेखा, आरवी, तन्वी, महाराष्ट्र से उत्तम जमधाड़े, स्वरा जमधाड़े, आत्माराम आसोले, ललिता आसोले, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू, साजिदा रानी और हिना कौसर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत रानी, तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ, खैल बाज़ार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा और कोयल और इनके साथ हैं नानक चंद मल्होत्रा, जैतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शवाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शवाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज़ आलम, नाज परवीन, यवतमाल से जयराम सिंगनकर, दिशांत कुमार सिंगनकर, वंदना धुले, अर्पिता और समस्त सिंगन परिवार। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH।

उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ों में आइए सुनवाते हैं आपको यलगार फिल्म से गीत। गीत के बोल लिखे हैं सुदर्शन फकीर ने और संगीत दिया है चन्नी सिंह ने। सुनना चाहा है आप सबने करमपुरा नई दिल्ली से कविता गौरव मानसी अनिल मदान, फुल चिंचोली पंढरपुर महाराष्ट्र से जाकिर मुलानी सुमैया सुभान समीर सलमा मुमताज दिलशाद नसीर मुलानी बाबू बी मुलानी और बादशाह मुलानी, शेरड़ा हनुमानगढ़ से मंटू शर्मा सोनू शर्मा सुशीला और लीलाधर शर्मा, वारणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर तेजस्विनी चौहान माई इंदूरकर शौर्या श्रेयस अंकिता और अनिकेत चौहान, कैथल से मधु नायक समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति गुप्ता राधे दीपक अंकुर राघव गुप्ता, कैदीमुड़ा रामगढ़ छत्तीसगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह ऋषभ सिंह लीलू सिंह और ऋतु सिंह, धनबाद झारखंड से अमित कुमार सिंह प्रियंका सिंह स्मृति, झाझा बिहार से संजीव कुमार सिंह पूजा रवि आरती सिंह, पटना बिहार से भुवनेश्वर मीनू लीलू, गांव 34 एसटीजी पीलीभंगा से अमन मेहरा समर मेहरा ऋतु मेहरा और बिशन लाल मेहरा। आप सबकी पसंद पर यलगार फिल्म से सुनवाते हैं आपको ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवाने जा रहे हैं आपको हीरो फिल्म से गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना हीरो फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज़ों में चांदनी फिल्म से गीत। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है शिव हरी ने। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, कर्णपुर राजस्थान से शिव कुमार सेठी, सुनीता सेठी, कमल सेठी, ज्योति, शबद सेठी, बानी और राजू, नरवेल मैथुन से पुजानजी नहावकर, विशाल नहावकर, पुणे महाराष्ट्र से शैलेंद्र पुरी, सोनम धनुषगिरी, सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु अनुराग, सुलोचना चारवी, प्रणव सांवले, दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा, सालियाखेड़ी मालवा से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसमतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विनी कुलकर्णी, कल्पना सुनीता पांडे, मालती कंझरकर, संगीता उषा रेंघाटे, छाया बोरकर, तृप्ति शिंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखना रानी, सदफ आरजू, जूही इकबाल, आमना नसरीन, इमरान अहमद, नुरेशा अहमद, खजूरी खास दिल्ली से पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ गौरव नेगी, मीठी और कुहू। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं चांदनी फिल्म से ये गीत।

0: आशा भोसले और विनोद राठौड़ के गाए इस गीत के साथ ही मन चाहे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।